Jakarta. विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ जयशंकर ने ये बात कही। इसमें संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान भी उपस्थित थे। डॉ जयशंकर ने बहुपक्षवाद के तत्काल सुधार के महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बदली वैश्विक व्यवस्था की गति को समझना जरूरी है। डॉ जयशंकर ने श्री नहयान के साथ बैठक में भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत

0: हो रही है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चर्चा के दौरान सीईपीए के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों के विस्तार पर बातचीत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के पास मौजूद गोला बारूद की 175 किस्मों में से 159 स्वदेशी हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले 12.5 वर्ष में रक्षा क्षेत्र ने न केवल अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के अपने दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव भी किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
1: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड है सीन एंड ऑफ वार। यह विचार एक ओर हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है, तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में यह माना जाता है कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसी तर्क पर मैं कहता हूं, होप फॉर द पीस बट प्रिपेयर फॉर वॉर।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से पूछा है कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की स्थिति से जुड़ी चिंताओं के समाधान के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट कब जारी करेगा। इनमें हत्याओं की जांच और इंटरनेट सुविधा पर लगाई गई पाबंदियां शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति के 81वें सत्र में कल मानवाधिकार उच्चायुक्त के साथ संवाद के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुज स्वरूप ने ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि हमें याद दिलाता है कि जीवन में आस्था का एक दीप जलता रहे तो कठिन से कठिन राह भी आसान लगने लगती है। इन दिनों मंदिरों में गूंजते मंत्र, घरों में जलती अखंड ज्योति और माँ के चरणों में अमृत होते फूल मन को एक अनोखी शांति से भर देते हैं। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ का यह स्वरूप ममता, वात्सल्य और शक्ति का सुंदर संगम है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका और हमारा प्यारा प्रोग्राम घर आंगन आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर।

आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो हमसफर सोनाली। कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार। आज के इस पावन दिन दोस्तों, हम माँ के श्री चरणों में नमन करते हुए आइए सुनते हैं भक्ति के कुछ पल, साथ में बिताते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम की इस मनभावन गीत के साथ।

0: फिल्म सुहाग में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में ये गीत। दोस्तों, नवरात्र के विशेष अवसर पर अब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक विशेष कार्यक्रम, शक्ति आराधना माँ स्कंद माता। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
1: नमस्कार, नवरात्र के अवसर पर आइए सुनते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम शक्ति आराधना। आज हम देवी भगवती के पावन रूप माँ स्कंद माता के बारे में जानेंगे।

या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नवरात्रि के इस पांचवें दिन आप सब लोगों को नवरात्रि की शुभकामना। नवरात्रि का यह जो पंचमी दिवस है, यह स्कंद माता गौरी, महागौरी, पार्वती, दुर्गा, इनके इस रूप को समर्पित है। दूसरे शब्दों में दुर्गा का जो पंचमी रूप है वह स्कंद माता।

माता नाम से जानी जाती है। अब यह स्कंद माता क्यों नाम पड़ा हमें यह भी देखना है। तो चूंकि स्कंद की माता यह अभिप्राय है यहां पर, और स्कंद का अर्थ यहां पर कार्तिकेय कुमार, कुमार कार्तिकेय नाम से जिसे हम जानते हैं वह अभिप्रेत है। जो पार्वती का यह रूप है स्कंद माता, यह पार्वती कार्तिकेय की माता है, जो कार्तिकेय देवासुर संग्राम में देवता पक्ष में नेतृत्व इन्होंने किया था, सेनापतित्व का निर्वहन किया था, और उसी में उन्होंने तारकासुर का वध किया था। तो इस रूप में स्कंद माता नाम से माता दुर्गा प्रथित होती है, प्रसिद्ध होती है। स्कंद माता का एकाध और नाम हम लोग पाते हैं, जिसे कि कमलासना कहते हैं, पद्मासना।

तारकासुर का वध किया था। तो इस रूप में स्कंद माता नाम से माता दुर्गा प्रथित होती है, प्रसिद्ध होती है। स्कंद माता का एकाध और नाम हम लोग पाते हैं, जिसे कि कमलासना कहते हैं, पद्मासना नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि माता दुर्गा कमल के ऊपर में विराजित होती हैं अपने इस रूप में, इसीलिए इनको कमलासना भी और पद्मासना भी कहते हैं। तारकासुर के वध के विषय में हम सभी जानते हैं, और उसमें यह हमें जानकारी है कि तारकासुर जो देवताओं को बहुत ही अधिक पीड़ित कर रहे थे, ऐसे में सभी लोग नारद जी की शरण में गए थे, जहां पर नारद जी ने उनसे कहा था कि भगवान शिव की जो संतति है, भगवान शिव का जो पुत्र है, वही उस देवता, उस दानव का दलन करेगा। और तदनुसार पार्वती का विवाह होता है भगवान शिव से, और उनसे जो उत्पन्न संतति है, इस कारण से पार्वती में वह मातृत्व आता है और पार्वती का वह विशेषण बन जाता है, जिसे हम स्कंद माता कहते हैं। मित्रों, ये जो स्कंद माता का अगर रूप और स्वरूप की हम चर्चा करें, हमें मुद्गल पुराण में प्राप्त होता है यह उल्लेख कि स्कंद जननी देवी सा पंचम्याम पूज्यते भक्तानाम वरदा नित्यम शिवदात्री नमोस्तुते। दूसरे शब्दों में कि जो स्कंद की माता है, जो देवी भगवती दुर्गा है, इनकी पूजा हम पंचमी के दिन करते हैं और ये भक्तों को वर देने वाली होती है, उनकी अभीष्ट जो अभिलाषा है उनको पूर्ण करने वाली है, ऐसे कल्याण को देने वाली इस दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूं। इसी तरह से मार्कंडेय पुराण, जिसका अंश दुर्गा सप्तशती है, जिस दुर्गा सप्तशती में हम देवी दुर्गा के सारे रूपों को जानते हैं, वहां पर भी उल्लेख मिलता है कि सिंहासन गता नित्यम पद्म हस्ता शुभानना स्कंद माता शिव पत्नी सदा भक्तार्ती नाशिनी। अर्थात दुर्गा के इस पांचवें रूप की महिमा का आख्यान मार्कंडेय पुराण में भी प्राप्त होता है, और वहां पर उन्हें कहा गया है कि यह सिंह वाहना है, अर्थात सिंह पर यह विराजित होती हैं, इनकी चार भुजाएं होती हैं, अपने दोनों हाथों में यह कमल पुष्प को धारण करती हैं, और एक हाथ में यह जो शिशु रूप स्कंद अर्थात कार्तिकेय है, वह उनकी रक्षा के लिए, उनके पालन पोषण के लिए वह धारण करती हैं। यह स्कंद माता भक्तों के सारे कष्टों को दूर करती हैं, और यही कारण है कि हम जो पुनः पुनः यह कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, तो यह जो मातृत्व है, इसी कारण से कदाचित हम इस दुर्गा देवी में जानते हैं। मैं इस स्कंद माता की आराधना करता हूं, स्तुति करता हूं, ये कहते हुए कि हम सब लोगों की लाज, हम सब लोगों के सम्मान की रक्षा करना, हे मेरी माता, मेरी लाज रखो मेरी माई।

0: अभी आपने देवी भगवती के पावन रूप माँ स्कंद माता के बारे में जाना। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर पंकज मिश्रा। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रश्मि कुकरेती।
1: स्वागत है दोस्तों, आप सभी का। आप सुन रही हैं कार्यक्रम घर आंगन, और अभी हमने ये विशेष प्रस्तुति सुनी माँ स्कंद माता के बारे में। और अब हम बात करते हैं, कुछ लोग अपने सपनों की दुनिया को नई दिशा देते हैं, अपने सपनों से भी वे इस समाज को और इस दुनिया को नई दिशा देते हैं। कुछ अपने कर्म से देश की सुरक्षा को मजबूत बनाते हैं, और कुछ अपने शब्दों से हमारे भीतर एक नई दुनिया रचते हैं। 15 अक्टूबर का दिन ऐसे ही योगदानों को याद करने का अवसर है। आज भारतीय सेना के इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्प डे पर हम उन अभियंताओं के समर्पण को नमन करते हैं जो सेना के वाहनों, मशीनों और उपकरणों को कार्यशील बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज ही भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती है। उनका जीवन हमें बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए निरंतर मेहनत करने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही आज हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा की पुण्यतिथि पर हम उन्हें भी स्मरण करते हैं। एकांकी और नाटक के क्षेत्र में उनका योगदान हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण धरोहर है। विज्ञान, तकनीक और साहित्य तीनों की राहें भले ही अलग हों, लेकिन इन सब के केंद्र में एक ही भावना है, अपने ज्ञान, अपनी प्रतिभा और अपने कर्म से जीवन को बेहतर बनाना, है ना। और साथियों, हम ये भी जानते हैं कि जीवन भी कितना अनोखा है। बीता हुआ कल हमारी स्मृतियों में है, आने वाला कल हमारी कल्पनाओं में, लेकिन हमारे हाथ में तो बस आज है ना, इसी खूबसूरत एहसास के साथ। तो आइए हम सुनते हैं एक बहुत खूबसूरत गीत

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे फिल्म वक्त का ये गीत। अच्छा दोस्तों, किसी खेत में लहलहाती फसल देखकर क्या आपने कभी सोचा है कि उसे उगाने में कितनी हाथों की मेहनत लगी होगी, और उन हाथों में कितने हाथ ऐसी महिलाओं के हैं जिनमें मेहनत तो जिनकी मेहनत तो हम सबने देखी है, लेकिन उनके योगदान की बात कम ही हुई है। तो देखिए ना, ये बात की मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 15 अक्टूबर का जो ये दिन है, यानी आज का जो दिन है, ये अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस इस रूप में इसे मनाया जाता है।

और आपको पता है इस दिवस का जो विचार है ना, ये 1995 में बीजिंग में हुई महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन के दौरान सामने आया था। इसके बाद ना 18 दिसंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे आधिकारिक मान्यता दी और 2008 से इसे मनाने की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं के योगदान को पहचान देना और उनके सामने आने वाली चुनौतियों की ओर दुनिया का ध्यान खींचना। और ग्रामीण महिलाओं की भूमिका ना, आप भी मानेंगी कि सिर्फ खेती तक सीमित नहीं होती। वे पशुपालन करती हैं, बीजों और पारंपरिक ज्ञान को सहेजती हैं, हस्तशिल्प तैयार करती हैं और परिवार की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाती हैं। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद कई महिलाओं को अपने काम का उचित मूल्य, आर्थिक संसाधन और आगे बढ़ने के बराबर अवसर नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए यह जो दिन है ना, सिर्फ उनकी मेहनत को सलाम करने का नहीं है, बल्कि उनके हुनर को पहचानने और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के बेहतर अवसर देने का भी है। और अब बात जब गांव की हो, वहां की मिट्टी की हो और लोक जीवन की हो, तो संगीत का रंग भी तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए ना। तो बस इसी रंग में रंगा हुआ ये गीत आपके लिए लेकर आए हैं, आइए सुनते हैं।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले के साथ आप सुन रहे थे फिल्म कारवा का ये गीत। अच्छा दोस्तों, ओढ़नी हो, कढ़ाईदार कपड़ा हो या हाथों से बने आभूषण, हमारे पारंपरिक पहनावे की खूबसूरती में उन कारीगरों का हुनर छुपा होता है जो पीढ़ियों से इन कलाओं को संभालते आ रहे हैं, मानेंगे ना। लेकिन इस हुनर को पहचान और सही बाजार दिलाना भी तो उतना ही जरूरी है। अब इसी कोशिश का एक उदाहरण है, वो क्या है पता है? शिल्प दीदी। जी हाँ, और ये एक शिल्प दीदी पहल है जिसे वस्त्र मंत्रालय के हस्तशिल्प विकास आयुक्त के कार्यालय ने जून 2024 में शुरू किया था। शुरुआती 100 दिनों के कार्यक्रम में 23 राज्यों के 72 जिलों में 100 महिला कारीगरों को चुना गया था और ना उन्हें ऑनलाइन बिक्री, सोशल मीडिया और कारोबार से जुड़ी जानकारी का प्रशिक्षण दिया गया ताकि वे अपने उत्पादों को अधिक ग्राहकों तक पहुंचा सके। इस शुरुआती चरण में 37 महिला कारीगरों ने लखपति बनने की उपलब्धि हासिल की। इस पहल का मकसद जो है वो है कि सिर्फ महिला कारीगरों के हुनर को पहचान दिलाना नहीं बल्कि उन्हें बेहतर कमाई और नए बाजारों से जोड़ना भी है। अगर कोई महिला हस्तशिल्प कारीगर सरकारी सुविधाओं और उपलब्ध अवसरों की जानकारी चाहती है ना, तो वह भारत सरकार के हस्तशिल्प पोर्टल india.handicrafts.gov.in, मैं रिपीट करती हूँ, indian.handicrafts.gov.in, यहाँ पर जाकर के इसकी सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि सामान्य कारीगर पंजीकरण से शिल्प दीदी कार्यक्रम में चयन नहीं होता है, हाँ ये याद रखिएगा आप, इसके लिए अलग प्रक्रिया होगी, वो आपको सारी जानकारी इस वेबसाइट से मिल जाएगी। और वैसे भी आप ये मानेंगे कि हमारी पारंपरिक कलाएं जो हैं वो तभी आगे बढ़ेंगी जब उन्हें बनाने वाले हाथों को सम्मान के साथ उनके काम की सही कीमत भी मिलेगी, है ना। और जब ओढ़नी हो और इसी रंग का कोई संगीत हो तो क्या बात है, क्योंकि इतनी खूबसूरत ओढ़निया, इतनी खूबसूरत कारीगरी से तैयार किए गए रंग बिरंगे कपड़े, और उसी तरह से अगर कुछ पैरों को थिरकने वाला, थिरकाने वाला कोई गीत हो तो समा कुछ और ही बन जाता है ना।

0: ढाल
1: मैं क्या सोचते
0: चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी चाहे बिक जाए हाल ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल जरा लचक लचक के जरा मटक मटक के लट झटक झटक के

आप भोसले की आवाज में

नई ताकत मिलेगी। अभी मैं देख रहा था जांस्कर में बर्फ भी गिर रही थी और मैं देख रहा था कि जांस्कर के लोगों का उत्साह, जब बर्फ गिर रही है तब भी तिरंगा लहराने का उनका उमंग उत्साह। साथियों, ये है मेरा लेह लद्दाख। मैं इन परियोजनाओं के लिए लद्दाख के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इन प्रोजेक्ट्स में लगे सभी इंजीनियरों, श्रमिकों और स्थानीय साथियों को भी बधाई देता हूं। मैं बीआरओ के साथियों की भी विशेष सराहना करता हूं। साथियों, कुछ समय पहले मैंने लेह के कुशोक बकुला रिनपोचे एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास किया था और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे ही इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का लोकार्पण करने का सौभाग्य भी मिला है। करीब 650 करोड़ रुपए की लागत से बना ये टर्मिनल इस एयरपोर्ट की सालाना यात्री क्षमता 10 लाख से बढ़कर 35 लाख हो जाएगी। यहां उड़ानों की संख्या भी 3 गुना तक बढ़ सकती है। इस टर्मिनल की एक और विशेषता है, लद्दाख की कठिन जलवायु को ध्यान में रखते हुए इसमें

जियो थर्मल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, सौर ऊर्जा का भी इसमें उपयोग हुआ है। भारत में जियो थर्मल हीटिंग की सुविधा वाला ये देश का पहला एयरपोर्ट टर्मिनल है, बधाई हो आप सबको। हमारा प्रयास है कि लद्दाख में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो और यहां के पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा जाए। इस एयरपोर्ट टर्मिनल से लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर को भी नई एनर्जी मिलेगी। मैं इस आधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए सभी लद्दाख के मेरे भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जिन अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है उनका भी बहुत महत्व है। आज निम्मू पद्म दारचा सड़क लद्दाख के लोगों को समर्पित की गई है। इस पर करीब 2500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जिस सफर में पहले करीब 12 घंटे लगते थे अब वो लगभग 3 घंटे में पूरा हो सकेगा। यानी इससे यात्रा का समय तो बचेगा ही, इस रोड से व्यापार और कारोबार को भी बहुत मदद मिलेगी। साथियों, पहले मुझे श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाली पावर ट्रांसमिशन लाइन के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिला था। आज हानू की जल विद्युत परियोजना और उससे जुड़ी ट्रांसमिशन लाइन का भी लोकार्पण हुआ है। हम सभी जानते हैं कि बिजली की भरोसेमंद व्यवस्था से रोशनी तो आती है लेकिन रोशनी से सिर्फ घर नहीं जीवन भी रोशन हो जाता है, जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। गांवों में कितने नए काम संभव हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाएं, स्थानीय लोगों के छोटे छोटे कारोबार, हर क्षेत्र में इसका लाभ मिलेगा। पूगा वैली में भी आधुनिक तकनीक से बिजली बनाने की परियोजना पर काम आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज प्रोजेक्ट अमृत हिम सरोवर के तहत बने 40 जलाशय भी लद्दाख के लोगों को समर्पित किए गए हैं। इनसे किसानों को जरूरत के समय सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। साथियों, हमेशा से ये कहा जाता है कि लद्दाख में प्रकृति के कारण जीवन बहुत मुश्किल होता है, प्राकृतिक वातावरण के अपने चैलेंज होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी परिस्थितियों के बावजूद पहले की सरकारों ने लद्दाख के विकास को प्राथमिकता नहीं दी, लेकिन आज केंद्र सरकार के लिए लद्दाख का विकास बहुत बड़ी प्राथमिकता है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से यहां विकास की जरूरतों पर भी और भी अधिक ध्यान दिया गया है। 2019 तक लद्दाख में करीब 1800 किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क था, आज ये बढ़कर 4000 किलोमीटर से अधिक हो गया है।

मेरे यहां 19 बड़े पुल थे, आज इनकी संख्या करीब 75 हो गई है। हेलीपैड की संख्या भी 7 से बढ़कर 40 से ज्यादा हो गई है। पहले लद्दाख के करीब 3.5% घरों में ही नल से जल पहुंचता था, आज लगभग 99% 99% घरों तक नल से जल की सुविधा पहुंच चुकी है। लद्दाख के अस्पतालों में बेड्स की संख्या भी बढ़कर दोगुनी हो चुकी है। इसके साथ ही जोजिला टनल जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर भी काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके पूरा होने से लद्दाख को देश के दूसरे हिस्सों से साल भर बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। साथियों, केंद्र सरकार का जोर लद्दाख में समृद्धि की नई संभावनाएं विकसित करने पर भी है। आज लद्दाख में पर्यटन के अवसर भी बढ़ रहे हैं। यहां विंटर टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने और हमने जो वाइब्रेंट विलेज अभियान के तहत लद्दाख के 40 से ज्यादा सीमावर्ती गांवों को विकसित किया जा रहा है और हम उसको पहला गांव कहते हैं। इससे दूर सुदूर के गांवों में भी रोजगार के अवसर बन रहे हैं। साथियों, पहले लद्दाख में 150 के आसपास ही होम स्टे थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 3000 हो गई है। लद्दाख में ग्रीन हाउस खेती को भी लगातार बढ़ावा दिया गया है। आज लद्दाख में 11,000 ग्रीन हाउस हैं। इनसे किसानों की आय बढ़ने की नई संभावनाएं बनी हैं। साथियों, लद्दाख में हाईकोर्ट बेंच की मांग भी लंबे समय से की जा रही थी, इसे भी हमारी सरकार ने ही पूरा किया है। इसी साल अगस्त में लद्दाख में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इससे प्रशासन के साथ साथ न्याय व्यवस्था भी सुगम बनेगी। साथियों, आज डिजिटल टेक्नोलॉजी से भी कई नए अवसर करीब आ रहे हैं। होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे हो या लोकल प्रोडक्ट्स हो, आज ऑनलाइन बिजनेस आय के नए रास्ते खोल रहा है। इसलिए हमने लद्दाख और दूरदराज के क्षेत्रों में भारत नेट और हाई स्पीड इंटरनेट का विस्तार किया है। सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हो, युवा ऑनलाइन पढ़ाई कर सके और स्थानीय उद्यमी देश दुनिया के बाजारों से जुड़ सके, इसके लिए भी लगातार काम हो रहा है। साथियों, हमारा विशेष ध्यान लद्दाख की नई पीढ़ी पर है। यहां के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन रहा है। आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के

सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे। साथियों, लद्दाख में खेलों की भी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। यहां के युवाओं ने आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। मुझे खुशी है कि लद्दाख में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि यहां के युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग और सुविधाएं मिले और वो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई उपलब्धियां हासिल करें। साथियों, लद्दाख में आप सभी अपने परिश्रम से जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो बेहतरीन होते हैं। आप तो जानते ही हैं, मैं जब विदेशी मेहमानों से मिलता हूं तो अक्सर लद्दाख में बनी चीजें उन्हें उपहार में देता हूं और उन्हें आपके बारे में भी जरूर बताता हूं। मैंने जर्मनी की चांसलर को, स्वीडन के प्रधानमंत्री को और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति जी को लद्दाख में बने प्रोडक्ट उपहार में दिए हैं। यहां की पश्मीना, सी बकथोर्न और लोकल हैंडीक्राफ्ट, खुबानी जैसे फल, इनमें व्यापार का कितना बड़ा पोटेंशियल जुड़ा है और इसलिए ही हमने लद्दाख की खुबानी को जीआई टैग दिया। आज इसकी दुनिया भर में डिमांड बढ़ रही है। हमारा प्रयास है यहां के उत्पादों को नए बाजार मिले, उनकी बेहतर ब्रांडिंग हो और उनका लाभ सीधे उत्पादकों तक पहुंचे। हमारा विशेष ध्यान चांगपा समुदाय के पशुपालकों पर भी है। उनकी मेहनत और पारंपरिक हुनर से जुड़ी पश्मीना की पहचान को और मजबूत किया जा रहा है। लद्दाख में अब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फूलों की व्यावसायिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत हमारे देश की अनमोल धरोहर है। यहां के प्राचीन मठ, बौद्ध परंपराएं और यहां के उत्सव इन्हें संजोना और अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित करना हमारा सामूहिक दायित्व है। इस दिशा में पूज्य कुशोक बकुला रिनपोछे जी, उनका योगदान हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमारी सरकार की कोशिश है कि दुनिया भर के लोग लद्दाख की संस्कृति और परंपराओं से परिचित हो। इसी मिशन को आगे रखकर आज लेह में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क का लोकार्पण हुआ है। इससे लद्दाख की इस प्राचीन विरासत को सहेजने के प्रयासों को और बल मिलेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी इस विरासत को जान सकेगी और दुनिया से आने वाले लोग भी लद्दाख के समृद्ध इतिहास से परिचित हो सकेंगे। साथियों, मुझे विश्वास है हम सब साथ मिलकर लद्दाख को विकास की

की नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर विकास के अनेक कार्यों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। जुलेई।

0: against the broad daylight murder of anti-drug activist Parvinder Singh Jota in Mansa on Tuesday and the prevailing drug menace in the state. Markets in several parts of the state are closed. Main and interior roads in some parts have been blocked. Slogans are being raised against the state government for its failure to contain the drug menace and control the prevailing law and order situation in the state. Police have made arrangements for maintaining peace. Several farmers' unions, political parties and traders' organizations have extended support to the bands, called on the appeal of the father of the slain activist, ex-serviceman Bhim Singh. Indian wrestler Vishwajit Ramachandra More has created history by clinching a historic silver medal in the Greco-Roman finals at the Under-23 World Championships in Las Vegas today. Competing in the men's 55-kilogram final, More narrowly lost 12-13 to Georgia's Koba Karumitse in the final seconds of the bout. This marks India's first ever silver medal and first ever appearance in a Greco-Roman final at the Under-23 World Championships. Benchmark domestic equity indices were trading over 1.6% up in the afternoon session today. The Sensex surged 1,337 points to 74,119 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर. दिन के 1:10 हुए हैं. आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से. तो कार्यक्रम एक ही फिल्म से लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी होस्ट और दोस्त रिया. स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार. श्रोताओं, आज जिस फिल्म के बारे में हम आपसे बात करेंगे, उस फिल्म का नाम है ससुराल. जी हाँ, ससुराल 1961 में बनी एक फिल्म है जिसे एलवी प्रसाद ने निर्मित किया और टी प्रकाश राव जी ने निर्देशित किया था. इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में राजेंद्र कुमार, सरोजा देवी, महमूद, ललिता पवार और शुभा खोटे शामिल हैं. तो चलिए, बातें तो और भी होंगी, फिलहाल सुनते हैं फिल्म का ये पहला गीत.

श्रोताओं, वर्ष 1961 में रिलीज हुई फिल्म ससुराल के संगीत की अगर बात करें तो इसे संगीत शंकर जयकिशन ने दिए थे एवं गीत हसरत जयपुरी और शैलेंद्र द्वारा लिखे गए थे। इस फिल्म का लोकप्रिय गीत तेरी प्यारी प्यारी सूरत के लिए मोहम्मद रफी जी को फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार भी मिला था। श्रोताओं, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट

श्रोताओं, बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि जिस फिल्म की बात आज हम कर रहे हैं वो असल में साल 1959 में आई सुपरहिट तेलुगु

श्रोताओं, ये फिल्म उस दौर के सामाजिक ताने बाने और शादी के बाद घर जमाई बनकर रहने वाले एक पढ़े लिखे ईमानदार लड़के शेखर के स्वाभिमान और पारिवारिक ड्रामे को बेहद खूबसूरती से दर्शाती है। फिल्म में ललिता पवार ने हमेशा की तरह अपनी कड़क सास वाली भूमिका को बेहद शानदार तरीके से निभाया था।

ससुराल, ये फिल्म कहानी है शेखर और बेला की प्रेम, पारिवारिक गलतफहमियों और रिश्तों में उतार चढ़ाव पर आधारित है। शेखर एक सामान्य और मेहनती युवक होता है जिसका विवाह एक अमीर घराने की लड़की बेला से होता है, इस शर्त पर कि उसे अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रहना होगा। फिल्म अपने दौर से कई आगे मानी जाती है।

इसी गीत के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आशा करती हूँ फिल्म से जुड़ी जानकारियां आपको पसंद आई होंगी। अब अपनी होस्ट और दोस्त रिया को दीजिए अनुमति।

0: कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट को लोकसभा मेंबर की हैसियत से खिदमात अंजाम देनी चाहिए या नहीं, ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता आजम के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी अहम मुहिम के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत शहर से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार की एक अहम मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज किया था। ये मुहिम बेटियों को बाइख्तियार बनाने और हरियाणा में सिन्फी तनासुब को बेहतर करने के सिलसिले में काफी अहम साबित हुई। चंद जिन जिले के बीबीपुर गांव के साबिक सरपंच और बेटी के साथ सेल्फी मुहिम शुरू करने वाले सुनील जगलान ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल सभी शोबों में बेटियों की ज्यादा से ज्यादा शमूलियत के सिलसिले में अहम साबित हुई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सुनील जगलान की इस कोशिश का तस्करा मन की बात के अपने प्रोग्राम में किया था, जिससे ये एक मुल्कगीर तहरीक बन गई। चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार शर्मा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बे।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत दुनिया भर के तकरीबन 100 ममालिक को अंदरूनी मुल्क तैयार करदा दिफाई साजो सामान बरामद कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की दिफाई बरामदात 2013-14 में महज 686 करोड़ रुपए से 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। आज नई दिल्ली में टाइम्स नाउ दिफा कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत ने मुख्तलिफ हथियारों के मामले में 90% से ज्यादा खुद किफालत हासिल कर ली है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनके योम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत को एक अहम ताकत बनाने के लिए अपनी नायाब साइंसी महारत को वक्फ किया और सदर जमहूरिया हिंद की हैसियत से आला तरीन जमहूरी इकदार बरकरार रखें। आज लास वेगास में भारत के कुश्ती खिलाड़ी विश्वजीत रामचंद्र मौर्य ने अंडर 23 आलमी चैंपियनशिप में ग्रेको रोमन के फाइनल में चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम की। मर्दों के 55 किलोग्राम के जुमरे में मुकाबला कर रहे विश्वजीत आखिरी सेकंड में 12-13 के मामूली फर्क से जॉर्जिया के कुश्ती खिलाड़ी से हार गए। ये अंडर 23 आलमी चैंपियनशिप के ग्रेको रोमन के फाइनल में भारत का पहला मुकाबला और अब तक का पहला चांदी का तमगा है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 5 बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और मुल्क के नाम वक्फ किया, जिनकी लागत 3300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस्लाम मजहब इख्तियार करने वाले हिंदू अफराद पसमानदा तबकों के रिजर्वेशन के फवायद का दावा नहीं कर सकते। अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के हुक्म को बरकरार रखा है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि हुकूमत नक्सलिज्म से मुतासरा लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की तमाम तर कोशिशें कर रही है। उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,000 मकानात फराहम किए हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के दिफाई साजो सामान की बरामदात की मालियत पिछले 13 साल में 38,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। और भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मौर्य ने लास वेगास में यूनान रोम फाइनल्स में चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates 5 major development projects worth over 3,300 crore in Ladakh. Hindus converting to Islam and other religions cannot claim backward class reservation, says Supreme Court, upholds Madras High Court order. Home Minister Amit Shah says government is committed for betterment of tribals affected by Naxalism, distributes assistive devices to persons with disabilities. India's defence exports surged to 38,000 crore from 686 crore rupees in the last 13 years, says Defence Minister Rajnath Singh. Upper reaches of Himalayan region receive season's first snowfall. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Haryana, Chandigarh, Punjab and Delhi today. And Indian

0: इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करने के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालतसी ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिमसरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसके विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
1: यहाँ के युवाओं ने आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। मुझे खुशी है कि लद्दाख में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में ग्रीन हाउस खेती को भी बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अब 11,000 ग्रीन हाउस हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए जनजातीय समुदाय को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के जीवन को फिर से संवारने, उन्हें सहायता देने और सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार

0: आज नक्सलवाद समाप्त हो चुका, मगर नक्सलवाद समाप्त होने से ये 5 दशकों की पीड़ा को हम समाप्त नहीं कर सकते। वो पीड़ा ने जहाँ जहाँ गांव दिया है वहाँ हमें मरहम लगाना पड़ेगा, उनको खड़ा करने का प्रयास करना पड़ेगा और वो सम्मान के साथ जीवन जी पाए इसकी व्यवस्था कर।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय भाषाओं से संबंधित कार्य समूह की बैठक आयोजित की। ये बैठक हाइब्रिड कार्यशाला के रूप में हुई जिसकी अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने की। श्रीमती चोपड़ा ने बैठक को संबोधित करते हुए जनजातीय समुदायों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में भाषा के महत्व पर जोर दिया। बैठक में देशभर के प्रमुख भाषाविदों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और जनजातीय समुदायों के भाषा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि हिंदू धर्म से इस्लाम या अन्य गैर हिंदू धर्मों में धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि पूर्व के सामाजिक पिछड़ेपन को धर्मांतरण के बाद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक रिपोर्ट।
3: न्यायालय ने कहा कि गैर हिंदू सामाजिक व्यवस्था में धर्मांतरण स्वतः किसी अधिसूचित पिछड़े वर्ग समुदाय की सदस्यता प्रदान नहीं करता। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत वैधानिक लाभ केवल किसी व्यक्ति की धर्मांतरण पूर्व स्थिति के आधार पर नहीं दिए जा सकते। न्यायालय ने

0: दोहराया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है। ये फैसला मार्च 2024 के तमिलनाडु सरकार के एक आदेश से संबंधित याचिका के जवाब में आया है, जिसमें दूसरा धर्म अपना चुके लोगों को आरक्षण लाभ देने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी धार्मिक निकाय वैधानिक अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं और हिंदू धर्म में पुनः धर्मांतरण के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र तथ्य आधारित विशिष्ट सत्यापन की आवश्यकता होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
2: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड हैव सीन एंड ऑफ वॉर। यह विचार एक ओर हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है, तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।
1: रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इन्होंने कूटनीतिक निंदा

0: सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
1: सरकार के एक प्रमुख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में पानीपत से की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेल्फी विद डॉटर के जनक जींद जिले के बीबीपुर गाँव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वजह से बेटियों की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है।
2: अगर हम देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से पहले हरियाणा का लिंगानुपात कम था, हरियाणा में लड़कियों की साक्षरता दर कम थी, हरियाणा की लड़कियां विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन अगर आज हम देखें तो हरियाणा की लड़कियां करीबन 75% साक्षरता है, जो कि करीबन 64% 2014 से पहले होती थी। उसके साथ ही अगर हम बात करें लड़कियों के स्वास्थ्य को लेकर, कुपोषण को लेकर, वो दर भी लगातार रही है। इसके साथ ही हम खेलों में लड़कियों की भागीदारी देखें तो 6200 सभी गांवों में आज के दिन खेल नर्सरियों में लड़कियां पहुंच रही हैं, तो खेलों में लड़कियों की भागीदारी करीबन 60% ज्यादा बढ़ चुकी है। लिंगानुपात जो 879 हरियाणा का होता था वो 920 925 930 तक आज के समय चला जाता है। और खास बात ये रही कि कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगी है।
1: उल्लेखनीय है कि सुनील जागलान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा से देश सेवा की भावना के साथ शुरू किए गए सेल्फी विद डॉटर अभियान का बेटियों के प्रति नजरिया बदलने में बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री ने इस अभियान को राष्ट्रव्यापी अभियान में बदल दिया। दूरदराज क्षेत्र से निकला यह अभियान अब एक वैश्विक अभियान बन चुका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 से पहले विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
3: महिलाएं पीछे रह जाते थे आर्थिक रूप से, केवल परिवार का देखभाल, परिवार का सहयोग ही करते थे, छोटे छोटे चीजों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते थे, लेकिन आज वो आत्मनिर्भर बन गए। केवल आत्मनिर्भर नहीं, दूसरों का भी और सहारा देने वाले बन गए। ये केवल उनके इनकम नहीं है, ये देश का आर्थिक समृद्धि, देश का महिलाओं का विकास भी ये समाहित है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदार

0: आत्मनिर्भर बन गए। केवल आत्मनिर्भर नहीं, दूसरों का भी और सहारा देने वाले बन गए। ये केवल उनके इनकम नहीं है, ये देश का आर्थिक समृद्धि, देश का महिलाओं का विकास भी ये समाहित है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ जयशंकर ने ये बात कही। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी 21 तारीख तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में सोमवार तक तेज वर्षा का अनुमान है। इस बीच जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा और ओलावृष्टि का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका के लास वेगास में आज पुरुषों के 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में एक रोमांचक मुकाबले में विश्वजीत को मामूली अंतर 12-13 से जॉर्जिया के कोबा कारुमित्ज़े से हार का सामना करना पड़ा। श्री रामचंद्र मोर अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन के फाइनल में पहुंचने और पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दरअसुपैंतीस आकाशवाणी दिल्ली का नेशनल न्यूज सर्विस 24x7 प्रोग्राम मीडिया वाइफ दोन एफ एम एकदि आकाशवाणी करगिल एनसीआरटी न सी आई ई टी बसपी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग प्रचुगत

से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू और सतीबाई साहू हैं। आपको बताना चाहते हैं कि उमंग एनसीईआरटी का कार्यक्रम बहुत हमें पसंद है। हम सादर आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके लिए प्रकट करते हैं। साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल और संतोषी पटेल जी का। लिखते हैं, विमलेश जी, अजीत जी, सादर नमस्कार। 14 सितंबर दिन सोमवार का कार्यक्रम बहुत ही खास और शानदार रहा। टिम टिम तारा बोलो टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा। इस गीत ने मन मोह लिया। पूरा कार्यक्रम बेहद रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक लगा। बच्चों के लिए ऐसी सुंदर और सीख देने वाली प्रस्तुति के लिए आप दोनों को और साथ ही साथ सीआईटी एनसीईआरटी की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। धमधा ग्राम सुखनी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी का। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। और एक संदेश और हमें मिला है, लिखते हैं रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू जी का। एक संदेश और सुनते हैं जिसे लिखा है हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी ने। और आपने लिखा है करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से। लिखते हैं, विमलेश जी एंड अजीत जी, गुड मॉर्निंग। इट वॉज ए ग्रेट प्लेजर टू लिसन टू द पोएम द क्रो इन म्यूजिकल मैनर टूडे। What a coincidence it is that I read this poem in my childhood in the textbook and got it listened to it in a musical form. I liked this poem and song very much. Thank you very much. आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो आइए श्रोताओं, अब शुरू करते हैं एक और रोचक आविष्कार की कहानी। श्रोताओं, सच्चाई तो ये है कि हम इंसान भी बड़े अजीब हैं, है ना? जब कोई तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम हो जाती है ना, तो हम भूल ही जाते हैं कि उसने दुनिया को कैसे बदल दिया। अब पेन ड्राइव को ही लीजिए ना, छोटी सी उंगली भर का टुकड़ा है, लेकिन इसके अंदर हमारी पूरी पढ़ाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हजारों तस्वीरें और न जाने कितने वर्षों का डेटा बंद है। लेकिन श्रोताओं, जिसे आज हम इतनी आसानी से जेब में डालकर घूमते हैं ना, 25-30 साल पहले किसी ने सोचा भी

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके मित्र अजीत का नमस्कार जोहार। तो आइए सुनते हैं सुविचार हमेशा की तरह। तो हमें सुविचार भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह की पहली किरण दिखाई देती है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस उम्दा संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला संदेश। लिखते हैं उद्घोषक विमलेश जी और अजीत जी, नमस्कार। हम छत्तीसगढ़ सहसपुर

बड़ा करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें कुछ बड़ी धनराशि की जरूरत थी। मोरान अपनी कंपनी के लिए धन जुटाने के लिए अमेरिका पहुंचे। वहां एक नामी निवेशक के सामने उन्हें अपना प्रेजेंटेशन देना था। तो हुआ ये कि मोरान बड़े आत्मविश्वास के साथ मीटिंग रूम में पहुंचे, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त पर उनका लैपटॉप चालू ही नहीं हुआ। मोरान घबरा गए। घबराकर उन्होंने वहां मौजूद दूसरे कंप्यूटर में अपनी फ्लॉपी डिस्क लगाई और फिर वही हुआ जिसका डर हर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले को होता है। जानना चाहते हैं क्या हुआ? हुआ ये कि स्क्रीन पर लाल लाल बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर आ गया, डिस्क करप्टेड। श्रोताओं, वो बड़ा निवेशक घड़ी देखता रहा। मोरान पसीने पसीने होते रहे। पूरी तरह से उन्होंने कोशिश किया कि वो फ्लॉपी डिस्क खुल जाए, लेकिन डेटा नहीं खुला। अंत में निवेशक आई एम सॉरी बोलकर चल दिया। मीटिंग रद्द हो गई और मोरान को उस कमरे से सिर झुकाकर बेहद शर्मिंदा होकर निकलना पड़ा। तो साथियों, उस शाम होटल लौटते हुए डॉन मोरान गुस्से और लाचारी से भरे हुए थे। उन्होंने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से एक सवाल पूछा, क्या इंसान ऐसा कोई छोटा मजबूत और भरोसेमंद साधन नहीं बना सकता जो चाबी के गुच्छे की तरह जेब में आ जाए और जिसका डेटा कभी खराब ना हो? बस उनके इसी विचार ने पेन ड्राइव की नींव रख दी। यानी असफलता ही नए विचार की चिंगारी बनी। लेकिन ये हुआ कैसे? श्रोताओं, इसके लिए आपको बहुत थोड़ी सी तकनीकी जानकारी देते हैं। आपको पता होना चाहिए, उस दौर में कंप्यूटर की दुनिया में दो नई चीजें दस्तक दे रही थीं। पहली थी यूएसबी पोर्ट, जिसका इस्तेमाल उस समय लोग सिर्फ माउस या कीबोर्ड जोड़ने के लिए करते थे, और दूसरी थी फ्लैश मेमोरी, यानी ऐसी चिप जिसके कारण बिजली चले जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता था। तो डॉब मोरान ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए। मोरान और उनकी टीम ने फ्लैश चिप और यूएसबी कनेक्टर को अंगूठे जितने छोटे खोल में फिट कर दिया। ना किसी तार की जरूरत, ना किसी बैटरी की, और उन्होंने उसे कंप्यूटर पर लगाया। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, कंप्यूटर का कुछ डेटा वहां ट्रांसफर हो चुका था। उन्होंने उसका नाम रखा डिस्क ऑन की, यानी चाबी के छल्ले में लगने वाली डिस्क। आपको पता है श्रोताओं, उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी थी? अंदाजा लगाइए। शायद आप सोचते होंगे 1 GB या 2 GB, आपके अलग अलग अनुमान होंगे, लेकिन श्रोताओं आपको बताना चाहता हूं, उसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी थी मात्र 8 MB, यानी 8 MB। आज तो 8 MB में हमारे फोन से खींची गई एक अच्छी सी फोटो भी नहीं आती। भले ही ये आज कम लगे, लेकिन श्रोताओं उस वक्त ये 8 MB पूरे 5 फ्लॉपी डिस्क के बराबर थी। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये फर्श पर गिर भी जाए तो इसका डेटा सुरक्षित रहता था। लेकिन श्रोताओं, अब प्रश्न है, अमेरिका और पश्चिमी देशों में इसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव कहा जाता है, तो ये भला पेन ड्राइव कैसे बन गई? इसका नाम पेन ड्राइव कैसे पड़ा? ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है। जब ये तकनीक एशियाई बाजारों में आई तो कई कंपनियों ने इसे पतले मार्कर पेन जैसा आकार दिया, जिसमें पीछे एक क्लिप होती थी, और लोग उसे शर्ट की जेब में पेन की तरह रख लेते थे। बस हमारे लोगों ने देखा और झट से नाम रख दिया पेन ड्राइव। और इस नन्ही सी ड्राइव ने ना जाने कितनी चीजों की छुट्टी कर दी। इसने फ्लॉपी डिस्क को सीधे म्यूजियम पहुंचा दिया। जो लोग बैग में सीडी और डीवीडी के भारी भारी कैसेट लिए घूमते थे, जिन पर जरा सी खरोंच आते ही गाने अटक जाते थे, पेन ड्राइव ने इन सब का नामो निशान मिटा दिया। और आज तो कमाल हो गया है श्रोताओं, 8 MB से शुरू हुआ पेन ड्राइव का ये सफर आज 1 TB और 2 TB तक पहुंच चुका है। यानी पूरी दुनिया का ज्ञान, फिल्में और किताबें एक छोटी सी उंगली के पोर जितनी जगह पर समा सकती है। तो अब जरा सोचिए श्रोताओं, अगर 1998 की उस शाम डॉब मोरान की वो फ्लॉपी डिस्क खराब ना हुई होती, तो शायद हम आज भी फ्लॉपी डिस्क और नाजुक सीडी के जंजाल में ही उलझे होते। जी हाँ श्रोताओं, यही तो है विज्ञान की खूबसूरती। जब कोई भी इंसान किसी परेशानी से तंग आकर एक बेहतर विकल्प ढूंढने की ठान लेता है, तो शुरू होता है नवाचार और दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएं, तो 1998 की उस शाम को कभी ना भूलें जिस दिन फ्लॉपी डिस्क खराब हो गई थी और डॉब मोरान ने इस बात को ठान लिया था कि वो इसका विकल्प ढूंढ कर ही दम लेंगे। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम उमंग और सीखते रहिए नई नई बातें। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
किस

0: व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की। श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आम की गुठली। कक्षा 3 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पौधरोपण का संदेश दिया गया है तथा ये बताया गया है कि मात्र पौधा रोपना ही पर्याप्त नहीं है, पौधे की समुचित देखभाल भी की जानी चाहिए।
1: एक दिन अम्मा बाजार से बच्चों के लिए आम लाई। 1 किलो में 7 आम आए। आम छोटे छोटे और खूब रसीले थे। अम्मा ने उन आमों को धोकर फ्रिज में रख दिया और बच्चों से कहा,
2: शाम को अब्बा दफ्तर से आएंगे, तब तक फ्रिज में आम भी ठंडे हो जाएंगे। रात के खाने के बाद हम आम खाएंगे।
1: मुन्ने को आम बहुत पसंद थे। थोड़ी देर में अम्मा, सीमा और समीर दूसरे कमरे में चले गए। अब 4 साल का शरारती मुन्ना कमरे में अकेला रह गया। उसने इधर उधर देखा तो आसपास कोई ना था। मुन्ने ने मौका पाकर चुपके से फ्रिज खोलकर एक आम उठा लिया और खूब मजे लेकर चूस चूस कर खाया।
3: इतना मीठा आम है, ये आम खाके तो मजा आ गया।
1: फिर मुन्ने ने हाथ मुंह धोकर कुल्ली कर ली और दूसरे कमरे में जाकर दादा दादी के साथ बातें करने लगा। शाम को अब्बा आए। दादा दादी के साथ बैठकर सबने रात का खाना खाया। खाना खाकर अम्मा ने जब फ्रिज से आम निकाले तो 7 की जगह सिर्फ 6 आम थे। अम्मा ने बच्चों से पूछा,
2: क्या आप में से किसी ने एक आम खाया है?
1: सीमा और समीर ने इनकार में अपनी गर्दनें हिलाई।
3: नहीं अम्मा, हमने तो फ्रिज खोला ही नहीं।
1: मुन्ने को शर्म आ रही थी, फिर भी जी कड़ा करके उसने कहा,
3: नहीं, मैंने तो आम नहीं खाया।
1: अब्बा बच्चों का इनकार सुनकर मुस्कुराए और कहा,
4: आम तो आप लोगों के लिए ही आए थे, अगर आप में से किसी ने एक आम खा भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इन आमों की गुठलियाँ बहुत छोटी थी। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर किसी बच्चे ने आम की गुठली भी निगल ली होगी तो आज रात उसके पेट में बड़े जोर से दर्द होगा।
1: इतना सुनना था कि मुन्ना झट से बोल पड़ा,
3: नहीं नहीं अब्बा, गुठली तो बड़ी थी, मैंने तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था।
1: ये सुनकर सारे लोग हंस पड़े। मुन्ना शर्म से लाल हो गया। पास ही बैठी दादी जान ने कहा,
5: अरे वाह, मेरे मुन्ने ने सच को कबूल करके मेरा दिल जीत लिया।
6: तो बच्चों, आपने सुनी ये कहानी, अच्छी लगी ना? अच्छा, अब आपके लिए कुछ सवाल हैं। ऐसे कौन कौन से फल हैं जिनकी गुठली फलों के अंदर होती है, उसकी एक फेहरिस्त बनाइए। ऐसे कौन कौन से फल हैं जो सिर्फ गर्मियों में मिलते हैं, बीज, पत्ती

0: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
1: वीर जोहर की जय।
2: वीर

0: राजा जोरावर सिंह। हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जीरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
1: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
0: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
1: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
2: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमानी का कोई मौका ही ना मिले।
3: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
2: जी।
3: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
2: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
3: बिल्कुल,
2: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
3: जी मंत्री जी।
2: जी महाराज।
0: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
4: होशियार, खबरदार, रियासत जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास

0: से महाराजा रहे हैं। महाराज जोर से
1: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखें और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
2: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
1: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
2: देखिए निजाम साहब।
1: जी फरमाइए।
2: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं।
1: जी,
2: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
1: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं।
2: जी,
1: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
3: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
4: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
5: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
3: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
6: बिल्कुल।
3: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साए की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब न हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
6: हुजूर, आप फिक्र न करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
3: लेकिन जरा होशियारी से।
6: जो हुकुम सरकार।

0: पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों न गंवानी पड़े।
1: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी।

सपहर 3:30 बजे अंदाज़े नज़र प्रोग्राम के तहत एक मुबाहिसा आप सुनेंगे। मौजू है इल्म की फरावानी और उस्ताद का बदलता किरदार। शाम 4 बजे आप लुत्फ़ानंदोज़ होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नाखूनों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। चार बजकर 50 मिनट पर खबरें नशर की जाएंगी और शाम 5 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामिन, ये था एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। सहर के 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप असलम बेग से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 5 बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और मुल्क के नाम वक्फ किया, जिनकी लागत 3300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कसीर मुल्की इदारों में फौरी इस्लाहात की जरूरत उजागर की है ताकि बदलते हुए आलमी निज़ाम की बेहतर अक्कासी हो सके। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के दिफाई साजो सामान की बरामदात की मालियत पिछले 13 साल में 38,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक दफ्तर से कहा है कि वो पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में पाकिस्तान की कार्रवाइयों के बारे में रिपोर्ट जारी करे। और भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने लॉस वेगास में 23 साल से कम उम्र की आलमी चैंपियनशिप में यूनान रोम फाइनल्स में चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लद्दाख में तकरीबन 3,350 करोड़ रुपए मालियत के 5 अहम तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और मुल्क को नाम वक्फ किया। इन प्रोजेक्टों का मकसद खित्ते में कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करना, तवानाई से मुतालिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, सकाफती विरसे को तहफ़ फराहम करना और पानी की यकीनी फराहमी में इजाफा करना है। इफ्तिताह के किए गए नए प्रोजेक्टों में लेह में कुशक बकुला रिमपोची हवाई अड्डे की नई मुसाफिर टर्मिनल इमारत शामिल है, जिसे 640 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। ये जदीद टर्मिनल 23,800 मुरबा मीटर से ज़्यादा रकबे में फैली हुई है और ये सालाना 35 लाख मुसाफिरों को सहूलत फराहम कर सकता है। वजीर आजम ने सरहदी सड़क तंजीम BRO की जानिब से तामीर करदा 298 किलोमीटर तवील निम्मो पदुम दर्चा सड़क को भी मुल्क को वक्फ किया। जनाब मोदी ने 9 मेगावाट वाले हनु छोटे पनबिजली प्रोजेक्ट और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दे हनु खलसी तरसीली लाइन का भी इफ्तिताह किया। इन प्रोजेक्टों से बिजली से मुतालिक बुनियादी ढांचा मुस्तहकम होगा और लद्दाख का बिजली नेटवर्क बेहतर होगा। जनाब मोदी ने लेह के सिंधु घाटी में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क का भी इफ्तिताह किया। इसके अलावा प्रोजेक्ट हिम सरोवर के तहत 40 गांवों में तामीर करदा 40 आबी जखायर का भी इफ्तिताह किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अजम के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी अहम मुहिम के जरिए इस नज़रिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है। 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत सरकार की एक मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज़ किया था। ये मुहिम बेटियों को बाख्तियार बनाने और हरियाणा में सिनफी तनासुब को बेहतर करने के सिलसिले में काफ़ी अहम साबित हुई है। जिन जिले के बीबीपुर गांव के साबिक सरपंच और बेटी के साथ सेल्फी मुहिम शुरू करने वाले सुनील जगलान ने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पहले पहल सभी शोबों में बेटियों की ज्यादा से ज्यादा शमूलियत के सिलसिले में अहम साबित हुई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सुनील जगलान की इस कोशिश का तस्करा मन की बात के अपने प्रोग्राम में भी किया था, जिससे ये एक मुल्क की तहरीर बन गई। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन मुल्क में ही तैयार किए गए समर्थक बहरी जहाज को कल कारवार में INS कदम्बा बहरी ठिकाने पर मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। ये भारतीय बहरिया का मुल्क में तैयार किया गया पहला कसीर मकसदी जहाज है, जिसे बेड़े में बाकायदा तौर पर शामिल किया गया है। इस जहाज को तमिलनाडु के कट्टुपल्ली बंदरगाह में मेक इन इंडिया इकदाम के तहत लार्सन एंड टूब्रो में तैयार किया गया है। ये उन 4 जहाजों में से एक है जिन्हें बहरी बेड़े में शामिल किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि ममालिक अपनी मुतालिका सूरत

हाल के मुताबिक बदलते हुए आलमी निज़ाम से हम आहंग होने के साथ साथ नई शराकत दारियाँ और मुतबादिल के इम्कान तलाश कर रहे हैं। उन्होंने बदलती आलमी सूरत हाल के सिलसिले में गुज़श्ता दहाई की भारत मुत्तहिदा अरब शराकत दारी का एक बड़ी मिसाल के तौर पर हवाला दिया। डॉक्टर जयशंकर अबूजबी में रायसीना मगरबी एशिया तकरीब से खिताब कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आलमी निज़ाम की तब्दीली की रफ़्तार को तस्लीम करना अहमियत का हामिल है, क्योंकि इससे तवील मुद्दती रुझानात और फौरी उतार चढ़ाव की अक्कासी होती है। डॉक्टर जयशंकर दूसरी रायसीना मगरबी एशिया तकरीब में शिरकत के लिए UAE के सरकारी दौरे पर हैं। मरकजी वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आज बैंकॉक में सालाना मीटिंग्स के मौके पर बरतानिया के वजीर ख़जाना जॉन हेली से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजारत ख़जाना ने कहा कि उन्होंने चौथे भारत बरतानिया इकतसादी बाजार मुजाकरात, फिनटेक मीटिंग्स और मुतालिका IUKFP मीटिंगों के कामयाब इख्तिताम और पिछले माशी और इकतसादी मुजाकरात के नतीज के सिलसिले में तबादले ख्याल किया। मीटिंग के दौरान वजीर ख़जाना ने मुश्तरका तरजीहात पर बरतानिया के साथ करीबी तौर पर काम करने के भारत के अज़्म का इज़हार किया। कनाडा के बैन अलावी तिजारत के वजीर मनिंदर सिंधु ने कहा है कि भारत और कनाडा के दरमियान तिजारती बातचीत रफ्तार पकड़ रही है और जामे इकतसादी साझेदारी समझौते के बारे में मुजाकरात इस साल मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मस्कूरा माहदे की समत पेशरफ से बाहमी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंचेंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान इकतसादी साझेदारी मजीद मुस्तहकम होगी। कनाडा के वजीर 300 अरकान पर मुश्तमिल तिजारती वफ्द की सरबराही करते हुए कल मुंबई पहुंचे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत दुनिया भर के तकरीबन 100 ममालिक को अंदरून मुल्क तैयार करदा दिफाई साजो सामान बरामद कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की दिफाई बरामदात 2013-14 में महज 686 करोड़ रुपए से 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। आज नई दिल्ली में टाइम्स नाउ दिफा का दिफा कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत ने मुख्तलिफ हथियारों के मामले में 90% से ज्यादा खुद किफालत हासिल कर ली है। उन्होंने आज इस बात को उजागर किया कि भारतीय फौज के पास 175 मुख्तलिफ हथियारों में से 159 अंदरून मुल्क तैयार करदा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर उन्होंने कहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत को एक अहम ताकत बनाने के लिए अपनी नायाब साइंसी महारत को वाकिफ किया और सदर जमहूरिया हिंद की हैसियत से आला तरीन जमहूरी अख्तार बरकरार रखी। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा इंसानी हकूक दफ्तर से कहा है कि वो पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में हलाकतों के वाकयात और इंटरनेट पर बंदिशों समेत वहां की सूरत हाल पर तशवीश से निपटने के लिए पाकिस्तान की जानिब से किए गए इकदामात के बारे में रिपोर्ट जारी करे। भारत ने इंसानी हकूक से मुतालिक हाई कमिश्नर के दफ्तर पर इंतहाई मनमाना रवैया इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा है कि कुछ मुल्कों में एहतजाज के ताल्लुक से उसके रद्देअमल से दोहरे मयार की अक्कासी होती है और कसीर मुल्की इदारों में भरोसा कमज़ोर होता है। आज लॉस वेगास में भारत के पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने अंडर 23 आलमी चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन के फाइनल में चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। मर्दों के 55 किलोग्राम के जुमरे में मुकाबला करने वाले विश्वजीत आखिरी सेकंड में 12-13 के मामूली फर्क से जॉर्जिया के कुश्ती खिलाड़ी से हार गए। ये अंडर 23 आलमी चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन के फाइनल में भारत का पहला मुकाबला और अब तक का पहला चांदी का तमगा है। और आखिर में खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 5 बड़े तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और मुल्क के नाम वक्फ किया, जिनकी लागत 3300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वजीर खारजा SJयशंकर ने कसीर मुल्की इदारों में फौरी इसलाहत की ज़रूरत उजागर की है ताकि बदलते हुए आलमी निज़ाम की बेहतर अक्कासी हो सके। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत के दिफाई साजो सामान की बरामदात की मालियत पिछले 13 साल में 38,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक दफ्तर से कहा है कि वो पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में पाकिस्तान की कार्रवाइयों के बारे में रिपोर्ट पेश करे। और भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने लॉस वेगास में 23 साल से कम उम्र की आलमी चैंपियनशिप में यूनान रोम फाइनल्स में चांदी का तमगा जीतकर तारीख

0: रकम की है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप हमारी नशियात सुन रहे हैं। मेरी पसंद ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। आज के प्रोग्राम में चंद वो नगमे हम आपकी नजर करना चाहेंगे जिनका ताल्लुक उस मौसीकी जोड़ी से है जिसने मौसीकी को फिल्मी नगमों की एक पहचान दी। फिल्म में अगर मौसीकी अच्छी होती थी तो ये जमानत होती थी इस बात की कि नगमे तो चलेंगे ही लेकिन फिल्म भी कामयाब हो जाएगी, यानी फिल्मी मौसीकी उस फिल्म की कामयाबी की जमानत हुआ करती थी। और ये जोड़ी है शंकर जयकिशन की, और इसी जोड़ी के एक साथी जयकिशन आज शंकर सिंह राम सिंह रघुवंशी, उनका नाम आज उनका यौम पैदाइश है। तो आइए चंद नगमे इन्हीं की मौसीकी में आपकी नजर करते हैं। पहला नगमा मुकेश की आवाज़ में है।

0: उसके अंदर एतमाद पैदा कर सकता है और उसे बेहतर सोचने और अच्छा करने का एक दर्ज दे सकता है। और ये जितने भी इज्म हैं फिलॉसफी के अंदर, इंडियन एजुकेशनल फिलॉसफी के अंदर, उनमें सब में यही बात है और ज़्यादातर जोर इसी बात पर दिया गया है कि लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए। अब बच्चे वहाँ से सोर्सेज उन्हें मालूम होते हैं, रिसोर्सेज मालूम होते हैं, वहाँ से वो चीज़ों को उठा लेते हैं, लेकिन उसकी एथेंटिसिटी कितनी है और वो कितने मुस्तनद हैं, इस चीज़ को वो जांच नहीं पाते हैं। मेरे सामने अक्सर ऐसे मामलात आ रहे हैं पिछले कुछ दिन से कि बच्चों को अगर मैं गज़ल पढ़ाता हूँ तो गज़ल के अंदर वो अफसाने की बातें ले आते हैं, या अफसाना पढ़ाता हूँ तो उसके अंदर वो ड्रामे की बातों को लेकर आ जाते हैं, और ये सब कुछ उन्हें मस्नूई ज़हानत के ज़रिए मिल रहा है। तो बच्चे खुद ही कन्फ्यूज़ हैं और वो किसी भी एक नतीजे पर सही ढंग से नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो उस्ताद की जिम्मेदारी है कि वो पहले तो जरिया हुआ करता था तालीम
1: बिल्कुल
0: देने का और
1: बिल्कुल
0: बच्चों की तरबियत करने का, लेकिन अब वो एक रहनुमा के तौर पर खुद भी सीखे, उन्हें भी सिखाए, और तजुर्बे के जरिए हम आगे बढ़े, मुशाहदे के जरिए हम आगे बढ़े। जिद्दू कृष्ण मूर्ति ने भी यही कहा है कि मुशाहदा एक उस्ताद के लिए बेइंतहा अशद जरूरी है, और मुशाहदे का फायदा उठाकर ही उस्ताद क्लासरूम के अंदर, कमरा जमात के अंदर, या फिर आम जिंदगी के अंदर एक अच्छे तालिब इल्म की तरबियत कर सकता है, उसे आगे बढ़ा सकता है, उसे समझा सकता है, उसे सिखा सकता है, और सही और गलत का फैसला क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए और उसे किस तरीके से नापा जाए, इसकी भी तमीज वो अपने स्टूडेंट को या
1: सर
0: तलबा को सिखा सकता है।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने। डॉक्टर खालिद अखलाक साहब, हम अक्सर इल्म और मालूमात को एक ही समझ लेते हैं। आप तकनीकी और पेशावराना तालीम से वाबस्ता हैं, तो आपके ख्याल में मालूमात और इल्म में बुनियादी फ़र्क क्या है? इस फ़र्क को समझाने में उस्ताद का क्या किरदार है?
2: बेशक आपका सवाल बहुत मौजू है। मालूमात और इल्म में एक बहुत बेसिक डिफरेंस है। बेसिकली मालूमात का मतलब यह है कि शेयर इंफॉर्मेशन,
1: जी
2: एक फैक्ट, एक सच्चाई। इल्म उस सच्चाई के अंदर रूह पैदा करती है, इल्म उस सच्चाई के अंदर हिकमत पैदा करती है, विजडम पैदा करती है।
1: जी
2: अगर उस इंफॉर्मेशन को हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम इस पैमाने पर उस इंफॉर्मेशन को देखते हैं और तौलते हैं, तब जाके वो इल्म का शक्ल इख्तियार करती है। तो ये एक बहुत बड़ा नुमाया फ़र्क है इंफॉर्मेशन में और इल्म में।
1: जी
2: अभी हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं उसमें जो मसनूई ज़हानत की बात की गई है, इसमें इंफॉर्मेशन का डिसिमिनेशन, इंफॉर्मेशन की रीच जो
1: जी
2: है वो बहुत ज़्यादा है आज के दौर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत के दौर में
1: जी
2: बहुत ज़्यादा है। यही चीज़ उस्ताद अपने बच्चों को सिखा पाते हैं या बता पाते हैं कि उस इंफॉर्मेशन को इल्म में कैसे आप तब्दील कर
1: तब्दील कर
2: सकते हैं,
1: सकते हैं।
2: कैसे आप उसमें हिकमत अमली इस्तेमाल करके उसको अपने काम के लिए मुफीद साबित कर सकते हैं, बना सकते हैं, और सोसाइटी एज ए होल,
1: जी
2: इंसानियत के लिए वो कैसे बेहतरीन शक्ल में सामने खड़ी
1: ला
2: हो
1: सकते हैं,
2: सकती है। तो
1: बिल्कुल
2: ये एक नुमाया फर्क जो है वो आपको जो बहुत बड़े पैमाने पे दिखती है कि तालीम में और
1: इल्म में
2: इल्म में और इंफॉर्मेशन में ये एक बड़ा फर्क
1: फर्क
2: जो है मेरी नज़र में, ये मुझे लगता
1: जी।
2: है।
1: शुक्रिया।
2: जी
1: हमारा मौजू है कि इल्म की फरावानी और मालूमात के शोर में उस्ताद का बदलता किरदार, रहनुमा, मुरब्बी या खुद एक तालिबे इल्म। तो अब हम शोर और इल्म के बहरान पर भी आप हजरात से कुछ जानना चाहेंगे। सामईन कराम, हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जिसे मालूमात का दौर कहा जाता है, लेकिन अजीब बात यह है कि मालूमात बढ़ने के बावजूद दुरुस्त मालूमात की तलाश, झूठी खबर की पहचान और मोतबर इल्म तक रसाई पहले से ज्यादा मुश्किल होती जा रही है। तो आइए डॉक्टर काजिम साहब से ये जानते हैं कि क्या आज का असल मसला इल्म की कमी नहीं बल्कि मालूमात की ज्यादती है, और क्या उस्ताद का काम अब मालूमात फराहम करने से ज्यादा मालूमात में दुरुस्त, मोतबर और बामाने चीज का इंतखाब करना रह गया है?
3: बिल्कुल, आज का दौर जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, और अब तो हवाओं में इंफॉर्मेशन है,
1: जी
3: और उस इंफॉर्मेशन में ये एआई ने भी ये जो किया है, एक जुल्म कह लीजिए जो उसके इस्तेमाल करने वाले हैं, कि एआई के जरिए बहुत सी फेक खबरें आपको फैला रहे हैं।
1: जी
3: तो अब उसमें तमीज कर पाना कि कौन सी सही खबर है और कौन सी फेक खबर है,
1: जी
3: ये मुश्किल अमर है।
1: जी
3: अब इस अमर में देखिए कि आप तो आवाज तक क्लोन हो रही है,
1: बिल्कुल
3: तस्वीर तो करते ही थे, अब आवाज भी क्लोन हो रही है,
1: जी
3: तो अब एक आदमी की आवाज में ही उसको सुनाया जा रहा है।
1: बिल्कुल
3: लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आपको वो हिंट्स देती है
1: देती है,
3: कि ये
1: बिल्कुल
3: बनाया हुआ है।
1: जी
3: उस्ताद की जिम्मेदारी फिर ये बढ़ जाती है कि आप जो इंफॉर्मेशन ले

0: आप जो सुन रहे हैं, अब आज देख लीजिए कि इतने सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं,
1: जी
0: सोशल मीडिया है, वेबसाइट्स हैं,
1: बिल्कुल,
0: इंफॉर्मेशन तो पूरी है उसमें। अब हर आदमी, पहले जो कम चीजें थी तो हमारे पास करने के लिए ज्यादा वक्त थे,
1: बिल्कुल,
0: अब इतना है कि हमारे पास वक्त नहीं है
1: वक्त नहीं
0: कि
1: है।
0: क्या सुने क्या ना सुने, क्या देखें क्या ना देखें।
1: जी
0: ये तमीज कर पाना बहुत जरूरी है। क्या देखना अगर छोड़ भी दें, मैं तो अपनी जिंदगी में जो फलसफा अपनाता हूं कि क्या नहीं देखना है ये जरूर तय कर
1: बिल्कुल,
0: लें,
1: ये जरूरी
0: जिंदगी
1: है
0: में क्या नहीं करना है
1: जी,
0: ये जरूर तय कर लें, तो नहीं करने का ऑप्शन कम हो जाएगा, करने का ऑप्शन बढ़ जाएगा आपका।
1: जी बिल्कुल,
0: लेकिन जनरली हम लोग तय ये करते हैं कि क्या करना है। इंफॉर्मेशन का ज्यादा होना और इंफॉर्मेशन के जराए का ज्यादा होना, इंफॉर्मेशन तो वही है उसको पेश करने का तरीका अलग है,
1: जी
0: तो इंफॉर्मेशन के जराए का ज्यादा होना हमारे लिए ज्यादा परेशानी का बायस है।
1: बिल्कुल
0: और
1: सही कहा
0: वहां
1: भाई
0: पर
1: आप।
0: उस्ताद जो है, फिर मैं ये कह रहा हूं कि वो जिम्मेदारी बढ़ती है कि उस्ताद अब सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाने का ये नहीं है, असल
1: जी
0: तरबियत है, असल तहजीब है, जिसको हम भूलते जा रहे हैं कि
1: बिल्कुल
0: हम चीजों को लें और कैसे बात करें, कैसे
1: जी,
0: पहुंचाएं, हम उस तहजीब में कैसे डालें। जैसे हमारी जबान भी, जबान तहजीब का नाम है,
1: जी
0: कि नशिश्तो बर्खास्त का नाम है,
1: बिल्कुल
0: गुफ्तगू का नाम है,
1: जी
0: और उस गुफ्तगू में कब कौन सी बात किस जबान में कहनी है, किस लहजे में कहनी है। हम आमतौर पर घरों में भी जब बात करते हैं तो अपने वालिद से मुख्तलिफ लहजे में बात करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: अपने बड़े भाई से मुख्तलिफ लहजे में बात करते हैं, अपनी माँ से मुख्तलिफ लहजे में बात करते हैं, अपने दोस्तों से मुख्तलिफ लहजे में बात करते हैं, और उनकी लफ्जियात मुख्तलिफ होती है।
1: जी
0: उसको कैटेगराइज हमें कर लेना चाहिए
1: बिल्कुल,
0: कि कौन कैसी बात कह रहा है, और वो कैटेगराइज करने में उस्ताद मदद करते हैं। इसलिए उस्ताद को 24 घंटे में 48 घंटे काम करना पड़ता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं डॉक्टर नदीम साहब की तरफ रुख करता हूं। आज सोशल मीडिया ने तालिबे इल्म को सिर्फ मालूमात ही नहीं दी है बल्कि राय बनाने का एक तेज रफ्तार मशीन भी फराहम कर दिया है। तो एक तालिबे इल्म किसी मौजू पर 5 मिनट की वीडियो देखता है और खुद को माहिर समझने लगता है। तो जनाब ये बताएं कि उस्ताद तालिबे इल्म में तहकीक और सवाल करने या तनकीदी फिक्र की आदत को कैसे बेदार कर सकता है या पैदा कर सकता है?
2: देखिए, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, और तरबियत करनी ही पड़ेगी क्योंकि मवाद इस कदर ज़्यादा है कि वो खुद ही इस पशुपेश में है कि क्या सही है और क्या गलत है। और कभी कभी तो असातिज़ा भी इसी पशुपेश में पड़ जाते हैं, उनको भी आजकल इतने ज़्यादा ज़राए मौजूद हैं कि उन्हें तलाश करनी पड़ती है क्या ये मुस्तनद है या नहीं है। अक्सर मेरे सामने इस तरह के मामलात आते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, कि बच्चे कुछ भी, जैसे मैं सवाल उन्हें देता हूँ या असाइनमेंट देता हूँ, तो उसके जवाब वो लेकर आते हैं जिसका रेलिवेंस ही नहीं होता, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता सवाल के साथ। तो इस तरह की चीज़ें जब मैं उनसे पता करता हूँ कि ये सोर्सेज आपने कहाँ से लिए, तो बताते हुए घबराते हैं, शर्माते हैं। और अभी भी यानी इतना खुलापन, इतनी सारी जगहों से चीज़ों को उठाने के बाद मस्नूई ज़हानत के ज़रिए या दीगर इंटरनेट पर मौजूद मवाद को उठाते हुए वो हिचकिचाते हैं ये बताते हुए कि हमने ये सब चीज़ें वहाँ से ली हैं। तो फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि देखो, किताब से अगर पढ़ोगे तो जहन नशी होगा और करके सीखने में ही फ़ायदा है।
1: बिल्कुल,
2: देखिए, करके सीखना और फिर उसे करना, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो आदमी इस तरीके से काम करेगा वो एक अच्छा उस्ताद भी बनेगा, अच्छा तालिब इल्म भी बनेगा, और सोसाइटी को भी कुछ बेहतर देगा। और
1: सही कहा।
2: जहां तक बात हो रही है कि नॉलेज क्या है और इल्म क्या है, तो इनमें दोनों में बड़ा फर्क है। देखिए, नॉलेज जो होती है वो इधर उधर से हासिल हो जाती है। नॉलेज का मतलब है जानकारी,
1: बिल्कुल,
2: या मालूमात। मालूमात कोई भी दे सकता है और उसके पास वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, लेकिन इल्म तो मेहनत, मशक्कत, तजुर्बा, मुशाहिदा, लिखकर, पढ़कर, बोलकर और उसकी तलाश में सरगर्दा होकर हासिल किया जाता है। इल्म बड़ी मुश्किल से हासिल होता है, मालूमात तो यूं ही मिल जाती है, और आजकल तो मालूमात का ढेर है मार्केट के अंदर। ये मालूमात जो है ये बच्चों को, उनके कंसंट्रेशन को दूसरी तरफ या दूसरी सिमतों में लगा रही है। वो इधर भी जाता है, उधर भी जाता है, ये भी देखता है, वो भी देखता है, लेकिन किसी एक चीज पर वो खास पकड़ नहीं बना पाता। हमें क्लास रूम टीचिंग के अंदर, कमरा जमात के अंदर जब हम पढ़ाएं बच्चों को, तो इस बात पर हमारा फोकस होना चाहिए, हमारा पूरा का पूरा जहन और तवज्जो मरकूज होनी चाहिए कि हम बच्चे को यहाँ पर क्या सिखाएं और कैसे सिखाएं, और फिर इसका अमली तौर पर वो क्या असर कबूल करता है। और फिर जब खुद तैयार होता है, यानी जब वो खुद आगे को चलकर उस्ताद बने या एडमिनिस्ट्रेटर बने या मुलाजमत के पेशे में जाए या दुकान लेकर बैठे, तो उसको किस तरीके से प्रेजेंट करता है या पेश करता है।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने। सामईन कराम, हम आपको ये भी बताते चलें कि हमारे पास जो मेहमान आयान कराम हैं उसमें जो प्रोफेसर काजिम साहब है वो मेरे ہیں اور ڈاکٹر ندیم صاحب کے استاد ہیں، اور خالد اخلاق صاحب بھی ہماری عمر کے ہی ہیں۔

0: तो यानी यहाँ पे दो नस्ल के उस्ताद बैठे हुए हैं, एक हमारी और एक हमारे उस्ताद भी बैठे हुए हैं, और मैं ये यकीन करता हूँ कि ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं और आप इससे महसूस भी हो रहे होंगे और कुछ सीख भी रहे होंगे। तो खाली साहब, आप सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं जनाब, कि आज तलबा के सामने मालूमात के हजारों दरवाजे हैं, मगर मसला ये है कि वो किस दरवाजे से दाखिल हों और किस रास्ते पर एतमाद करें। आप ये बताएं कि क्या आने वाले वक्त में उस्ताद का सबसे अहम किरदार इल्म देने वाले से ज्यादा इल्म तक पहुंचने का रास्ता दिखाने वाले का होगा?
1: जहाँ तक उस्ताद के किरदार का सवाल है, ये एक उस्ताद के लिए भी एक चैलेंज है कि उन मालूमात को एक्सप्लोर करे और उसको वेरीफाई करे। तो इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर के बजाय इन्फॉर्मेशन वेरीफायर। तो अगर हम इन्फॉर्मेशन तलबा को, बजाय इसके कि वो इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हैं, हम
0: बिल्कुल
1: इस चीज़ के लिए उनको माइल करें कि वो इन्फॉर्मेशन को
0: वेरीफाई,
1: वेरीफाई कर सकें,
0: बिल्कुल
1: तो ये एक बहुत बड़ा नुमाया कारनामा होगा उस्ताद की तरफ से।
0: जी।
1: और
0: और जाहिर सी बात है, वेरीफाई करने के लिए उस्ताद के पास ही आना
1: उस्ताद के
0: होगा।
1: पास ही आना
0: जी
1: होगा। दूसरी बात यह है कि अब से पहले
0: जी
1: कुछ हद तक क्लासरूम में जो उस्ताद पढ़ाते थे वो वन वे कम्युनिकेशन से काम
0: जी
1: चल जाता था,
0: बिल्कुल
1: लेकिन अब दौर जो है वो बाहमी मुज़ाकरात का है। वन
0: बिल्कुल
1: वे
0: बिल्कुल
1: कम्युनिकेशन से आप क्लास में उस्ताद जो है वो नहीं पढ़ा
0: नहीं
1: सकते।
0: पढ़ा सकते।
1: अब उनको अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना पड़ेगा,
0: जी
1: अपने स्टूडेंट्स को उनके अंदर खुद एतमादी पैदा करनी होगी कि वो सवाल करें।
0: बिल्कुल
1: और कोई भी सोसाइटी, कोई भी तहजीब उस वक्त तक कामयाबी के राह पे नहीं चल पाएगी या तरक्की नहीं कर पाएगी
0: जी
1: जब तक वो सवाल करना
0: नहीं सीखते,
1: नहीं सीखे।
0: बिल्कुल सही
1: तो
0: कहा।
1: जब वो सवाल करेंगे तो नई सोच, नई बेदारी उसमें पैदा होती है। तो यहाँ पे उस्ताद का रोल जो है वो बहुत ही क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: दूसरी बात, अब इन सब चीज़ों के लिए उस्ताद को भी तो अपडेट होना
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: पड़ेगा।
0: होना पड़ेगा
1: तो उस्ताद के लिए भी ये ज़रूरी है कि आज के जो तकाजे हैं
0: जी।
1: उन तकाजों के बुनियाद पे अपने आप को वो अपडेट करे और अपने स्टूडेंट्स के लिए एक दोस्त, एक फिलोसफर, एक गाइड की तरह
0: उनके साथ रहे,
1: उनके साथ
0: बिल्कुल
1: रहे और उनके साथ मिलजुल कर वो काम करे। जैसा कि विलियम आर्थर वाट ने कहा, मीडियोकर टीचर टेल्स,
0: जी
1: गुड टीचर एक्सप्लेन्स, सुपीरियर टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स,
0: जी
1: एंड द ग्रेट टीचर्स इंस्पायर्स। इस दौर में,
0: जी
1: मस्नूई ज़हानत के दौर में, टीचर का रोल जो है वो ग्रेट टीचर, फ्रॉम मीडियोकर टू ग्रेट टीचर, वो तब्दील होता जा रहा है।
0: बिल्कुल सही
1: हम
0: कहा
1: अपने स्टूडेंट्स में खुद एतमादी पैदा करें,
0: जी,
1: हम उनको मोटिवेट करें,
0: बिल्कुल
1: हम उनको सीखने समझने की उनमें सलाहियत को पैदा करें, ताकि जो भी मालूमात उनके पास आ रही हैं उनको यूज़ करके, उनको इस्तेमाल करके वो एक अच्छी समाज की तश्कील दे सके। क्योंकि अल्टीमेटली जैसा कि नदीम सर ने भी कहा
0: जी
1: कि भाई इल्म का जो ताल्लुक है वो किस
0: जी
1: चीज़ से है, हम इल्म क्यों हासिल करना चाहते हैं, हम क्यों चाहते हैं कि हमारा मुआशरा जो है तालीम याफ्ता हो।
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही
1: उसका
0: कहा,
1: जो बुनियादी किरदार है वो ये है कि हम समाज में बेहतरी पैदा कर सकें।
0: अगर मसनूई ज़हानत और तालीम की बात न करें तो शायद हमारी गुफ्तगू बेमाना हो जाएगी, क्योंकि इस मौजू पर पूरी दुनिया के तालीमी निज़ाम को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एआई के इब्तदाई मराहिल में भी आज तालिबे इल्म मज़मून लिखवाने, तर्जुमा करने, खुलासा बनाने, सवाल हल करने, प्रेजेंटेशन तैयार करने, हत्ता के तहकीक में भी एआई का इस्तेमाल कर रहा है। तो सवाल यह है कि एआई उस्ताद का हरीफ है या मुआविन? तो मैं आपसे ही खाली साहब ये जानना चाहूंगा कि चूंकि आप तकनीकी तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, क्या एआई मुस्तकबिल में क्लासरूम को बुनियादी तौर पर तब्दील करने वाला है या नहीं?
1: देखिए, किसी भी, कोई भी, जब भी कोई तकनीक, कोई
0: जी
1: नई चीज़ आती है तो उसके अपने फायदे और अपने नुकसान आते हैं।
0: जी
1: तो एआई के शक्ल में भी जो हमारे पास चीज़ आई है,
0: जी
1: या जो भी डिजिटल इंफॉर्मेशन या जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसके अपने फायदे और कुछ नुकसान आते हैं।
0: तो उससे हमें बचने की जरूरत है या उसके साथ चलने की
1: नहीं,
0: जरूरत है?
1: उससे हमें बिल्कुल बचने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारा ये अप्रोच होना चाहिए,
0: जी
1: हमारी ये सोच होनी चाहिए कि बजाय इसके कि हम एआई को अपना हरीफ समझें, हम उसे एक बेहतरीन दोस्त की शक्ल में अपनाएं।
0: बिल्कुल। डॉक्टर नदीम साहब, अगर एक तालिब इल्म एआई से अपना मजमून लिखवा रहा है, सवाल का जवाब हासिल कर रहा है या असाइनमेंट तैयार करवा रहा है, तो उस्ताद के सामने ये एक बड़ा सवाल है कि वो कैसे जांचे कि तालिब इल्म ने वाकई सीखा है या सिर्फ एआई से काम लिया है? क्या इसके लिए इम्तिहान और असाइनमेंट के मौजूदा तरीक़ाकार को बदलने की जरूरत है?
2: जी हाँ, ज़रूरत है। दरअसल तालीम देने का हमारा मकसद क्या है कि जो हमारे तलबा हैं उनको

0: वाली जिंदगी के लिए तैयार करना, और यही प्रैग्मेटिज्म में बोला है। और जॉन डी भी तो हमेशा इसकी वकालत करता रहे और बताते रहे कि तालीम जिंदगी नहीं बल्कि जिंदगी जीने की एक तैयारी का नाम है।
1: जी
0: तो अगर हमारे तलबा वहां से इस तरह का मवाद कुछ उठा लेते हैं, और वक्ती तौर पर जैसा कि अभी मैंने इससे पिछले सेगमेंट में भी बोला कि हमारा काम क्या है, हमारा काम ये होना चाहिए एक उस्ताद का कि हम अच्छे तालिबे इल्म तैयार करें, ऐसे तालिबे इल्म जो समाज में जाकर अपने आप को ये साबित कर सकें कि वो अच्छे तरीके से पढ़कर आए हैं, ना कि सिर्फ जानकारियां या मालूमात को लेकर आए हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है, देखिए मैं तो अपनी क्लासरूम टीचिंग के अंदर, जहां तक मैं अपनी बात करता हूं, और मेरा ताल्लुक तो सीआई से भी रहा है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो जहां तक मैंने सीखा और मैंने समझा और फिर मैंने उससे अमल भी किया उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा, तो वो ये देखा है मैंने, हमें प्रेजेंटेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
1: जी
0: बच्चा क्या सीखा, उसने बच्चे ने क्या सीखा और उसे वो किस तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है,
1: जी
0: इस पर बहुत ज़्यादा हमारा जोर होना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: अगर
1: बात।
0: हम इस जानिब ज़्यादा जोर देंगे और हमारी तवज्जो रहेगी, तो यकीनन हम इस तरह के फैसले लेने में हमको बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि हमारा बच्चा कुछ सीख रहा है।
1: शुक्रिया प्रोफेसर काजिम साहब। एआई चंद सेकंड में एक मजमून तैयार कर सकता है, लेकिन क्या वो तजुर्बा, एहसास, इंसानी ताल्लुक, अखलाकी बसीरत और जिंदगी की मानवियत भी सिखा सकता है? क्या यही वो मकाम है जहां उस्ताद की इंसानी हैसियत मजीद अहम हो जाती है?
2: शनाव साहब, ये बहुत अच्छा सवाल है। मशीन मशीन है, मशीन के पास हिस नहीं है,
1: बिल्कुल
2: उसके पास आप कह लीजिए दिमाग तो है
1: जी
2: लेकिन महसूसात नहीं है उसके पास।
1: जी
2: और अगर हिस नहीं है तो इंफॉर्मेशन को एक तरह से बेजान तौर पर पेश करता है, वो उसमें जान नहीं डाल सकता है।
1: जी
2: जिस तरह के इंफॉर्मेशन आप देंगे, पहले
1: जी
2: तो आपके पास होनी चाहिए उसको इस्तेमाल करने का, जैसे हर चीज के कि
1: जी
2: एक कोई भी चीज आपके हाथ में है
1: जी
2: उसको कैसे इस्तेमाल करें। मोबाइल का इस्तेमाल आप नहीं जानते हैं तो कोई भी किसी भी नाम का किसी भी इसका मोबाइल आप ले लीजिए, हम लोग जैसे आदमी वही फोन करेंगे या
1: बिल्कुल
2: व्हाट्सएप देख लेंगे या कुछ और ये कर लेंगे, लेकिन उसका एक्चुअल इस्तेमाल हमें नहीं मालूम है,
1: जी
2: तो वो कितना महंगा हम खरीद लें बेकार है, वही चीज है,
1: जी
2: सस्ता हो या महंगा। उसी तरह से जितनी मस्नूई जहानत की चीजें हैं, जितनी वेबसाइट्स हमारे पास हैं,
1: जी
2: आपके पास कितना इल्म है उसको इस्तेमाल करने के लिए,
1: जी
2: आप उसको क्या फीड कर रहे हैं,
1: जी
2: तो उस तरह से ही वो देगा। तो इसलिए उस्ताद जो है,
1: जी
2: उस्ताद की जिम्मेदारी बड़ी है और उस्ताद की कमी हमेशा रहेगी और उस्ताद की जरूरत हमेशा रहेगी। और उस्ताद जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो दर्श दिया था, हम
1: जी
2: उनकी याद में एक तरह से उनको याद कर रहे हैं, और अभी मैं 5 तारीख को उनके उनके हवाले से मतलब
1: योम
2: हम सब लोग
1: असातिज़ा,
2: यौम असातिज़ा मनाते हैं,
1: जी
2: तो वो उस्ताद, अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो उसूल दिए थे, जो दर्श दिए थे,
1: जी
2: वो उस जमाने में एआई नहीं था, उस जमाने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी,
1: जी
2: लेकिन क्या वो बेमानी हो गए हैं आज?
1: नहीं
2: आज ज्यादा मानवियत है उसकी,
1: जी
2: आज वो ज्यादा
1: बिल्कुल
2: जरूरत है हमें उन उसूलों की, उन तदरीस के तरीकों की।
1: जी
2: ठीक है एआई बोर्ड आ गया आपके पास, लेकिन
1: जी
2: उसको जब फीड करेंगे उसके इस्तेमाल का तरीका नहीं आएगा तो कैसे हम उसको इस्तेमाल करेंगे? तो
1: जी
2: जितनी वो है कि जैसे किताबें हैं वो पुराने उसूल हैं, पुराने लोग हैं और पुराने असातिज़ा हैं, उनके सारे उसूल आज भी ज्यादा मीनिंगफुल हैं। यानी
1: बिल्कुल
2: जब आप बेरारवी के शिकार होते हैं तब तहजीब की ज्यादा जरूरत पेश आती है।
1: बिल्कुल शुक्रिया आपका। चूंकि वक्त इजाजत नहीं देता, बहुत सारे सवालात मेरे जहन में थे, बहुत सारे सवालात हमारे सामईन के जहन में भी बने होंगे, उभरे होंगे, उनके जवाबात हम नहीं दे पाए। चलिए हम आपसे वादा करते हैं सामईन इकराम कि अगले प्रोग्राम में हम आपके उन सवालों के भी जवाब देंगे जिनके लिए आप हमें लिखते हैं, जिनके लिए हमें पूछते हैं कि हम अपने माहिरीन से उन सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएं, तो उसकी हम भरपाई करेंगे अगले प्रोग्राम में। लेकिन अब चलते चलते चाहते हैं कि अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान इकराम से एक आखिर में कि आज के दौर में आप तालिबे इल्म को क्या पैगाम देना चाहते हैं?
3: आखिर में मैं अपनी बात इस बात पे ख़त्म करना चाहूँगा कि एआई एजुकेशन के दौर में एक रिवोल्यूशनरी काम कर रहा है,
1: जी
3: तो इसके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं।
1: जी
3: तो जो भी स्टूडेंट
1: जी
3: इसको यूज़ करके, जो भी तालिबे इल्म इसको इस्तेमाल करके कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें, वो एक उस्ताद चुने जो उनको उस इन्फॉर्मेशन में तमीज़ करना सिखाए कि क्या ये सही है
1: और
3: या
1: क्या गलत
3: ये
1: है।
3: गलत है।
1: शुक्रिया आपका।
3: और इसके साथ ही हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी इन्फॉर्मेशन वो यूज़ कर रहे हैं वो इथिकली वैलिड हो,
1: बिल्कुल
3: अखलाकियात के बुनियाद पे
1: वो
3: वो
1: बिल्कुल
3: सही
1: सही
3: हो।
1: जी। शुक्रिया नदीम साहब, आप कुछ पैगाम देना चाहें।

0: तलबा को भी सीखना चाहिए
1: जी
0: और सही और गलत की तमीज़ करनी चाहिए। इसके अलावा असातिज़ा का भी ये फ़र्ज़ है कि वो तकनीक के साथ और ज़माने के साथ आगे बढ़ें और उन सब चीज़ों को सीखें। आमतौर पर मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जो रिटायरमेंट के नज़दीक असातिज़ा हैं हमारे, वो इस तरह की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा समझ नहीं रखते हैं या उन्हें वो चला नहीं पाते हैं, तो उन्हें खुद को भी तैयार रखना चाहिए। और टीचर का तो काम ही है कि उसे वक्तन फवक्तन अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा, तभी वो एक अच्छा उस्ताद बन सकता है।
1: जी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर काजिम साहब, आप उस्ताद के उस्ताद हैं और आपने वो ज़माना भी देखा है जिन असाज़ा के बारे में बात की जाती है, जिन असाज़ा के नक्शे कदम पर लोग चलना चाहते हैं, आप भी उनके मिसाल देते हैं, आपने उनको देखा है, उनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी है, आप क्या कहना चाहेंगे?
2: तो मेरा तो यही मशवरा है कि हम असातिज़ा को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और
1: जी
2: तालिबे इल्म को, हर तालिबे इल्म की अपनी ज़रूरत है, तो उसकी मुनासबत से पूरी क्लास 80 की है तो या 50 की है, सबको एक ना दें बल्कि आइडेंटिफाई करें। और अब तो ग्रुप एजुकेशन पर भी ये
1: जी
2: किया
1: जी
2: गया है कि
1: जी
2: क्लास में भी मॉनिटर के तौर पर 10-10 बच्चों के ग्रुप
1: जी
2: बना
1: जी
2: करके
1: जी
2: उस्ताद, एक एक उस्ताद को दिया गया है
1: जी
2: कि ये 10 बच्चों की तरबियत आप करेंगे,
1: जी जी
2: तो उन 10 में आप आइडेंटिफाई करें, दो ग्रुप हो जाएगा, तीन ग्रुप हो जाएगा,
1: जी
2: उसकी ज़रूरत के मुताबिक आप उनकी तरबियत करें, उनको सब बता दें कि ये चीज़ें आपके काम की है, ये आपके काम की नहीं है, ये यही पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। वो जरूर इससे हमारी नस्ल जो आगे बढ़ेगी, नस्ल आगे बढ़ेगी,
1: जी
2: न तो हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, हमारी कौम आगे बढ़ेगी और हम तरह मुल्क दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में जल्द से जल्द शामिल हो जाएंगे।
1: जी शुक्रिया आपका। तो सामीन इकराम, आज की गुफ्तगू से शायद एक बात पूरी तरह वाजह हो जाती है कि मालूमात उस्ताद को खत्म नहीं करती बल्कि उस्ताद के किरदार को तब्दील करती है। कल उस्ताद मालूमात का अमीन था, आज उस्ताद मालूमात का मुंतखब कुनंदा है। कल वो जवाब देता था, आज वो सवाल करना सिखाता है। कल वो किताब पढ़ाता था, आज वो तालिबे इल्म को ये सिखाता है कि किताब, इंटरनेट और मस्नूई ज़हानत के बेशुमार जवाबों में से दुरुस्त जवाब कैसे तलाश किया जाए। और शायद मुस्तकबिल का सबसे अच्छा उस्ताद वो होगा जो ये कहने में शर्मिंदगी महसूस ना करे कि मैं भी सीख रहा हूँ, क्योंकि उस्ताद का अजीम होना इस बात में नहीं कि वो सब कुछ जानता है बल्कि इसमें है कि वो सीखने का शौक भी नहीं छोड़ता। AI मालूमात दे सकती है लेकिन उस्ताद सवाल को सिमत दे सकता है, इंटरनेट जवाब दे सकता है लेकिन उस्ताद जवाब को ही मानवियत समझा सकता है।
3: दरें थे आकाशवाणी दिल्ली का उर्दू सर्विस प्रोग्राम लंगन न्यूटपिन मीडियम वेव दोनों एफ एम एक दिव्य आकाशवाणी करगिल वास्पत सो तुजी छुक कसत आकाशवाणी दिल्ली का संदेश टू सोल्जर प्रोग्राम रिले बेत रिले लाडांग बासत।

0: परिजनों को सहायक उपकरण भी वितरित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था के बीच देश अपनी परिस्थितियों के अनुसार नई साझेदारियां और विकल्प तलाश रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की स्थिति पर पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट जारी करने की मांग की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने बताया कि भारत का मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र 2025 तक 9% की वृद्धि के साथ 2,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उत्तर रेलवे ने आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा मार्ग पर विशेष आरक्षित त्योहार रेलगाड़ियां चलाने और मौजूदा फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा तथा गरज चमक के साथ ओलावृष्टि होने का अनुमान है। और भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ये थे इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। आगे हमारा प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो। आज का प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, मेरे साथ मेरा नाम है शाहिद और आज के हमारे संदेश टू सोल्जर्स के बहुत ही विशेष अतिथि हैं कर्नल कमर भारद्वाज, सेना मेडल से सम्मानित 1971 वॉर वेटरन, और हम उनका स्वागत करना चाहेंगे आज के हमारे इस खास शो में। कर्नल कमर भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका
0: सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना समय निकाला और आज आप हमारे शो में शामिल हुए हैं। हम अपने लिसनर्स को बता दें कि आप हमारा शो लाइव सुन सकते हैं हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में, और आप हमें मैसेज करके कर्नल कमर भारद्वाज से सवाल कर सकते हैं, कुछ बात करना चाहे तो आप पूछ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। और हमारे साथ आज के बहुत ही विशेष अतिथि जिन्होंने देश को देश की सेवा में दो पीढ़ियों से ज्यादा की सर्विस दी है डिफेंस सर्विसेज में, कमीशन किए गए कर्नल कमर भारद्वाज इंडियन आर्मी में 11 जून 1967 को राजपुताना राइफल्स इन्फेंट्री में। 1971 वॉर वेटरन है कर्नल कमर भारद्वाज। 1971 वॉर में उन्होंने कंपनी कमांडर के तौर पर लड़ाई लड़ी, उसके बाद उन्होंने अपने करियर में कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और किस तरह से शुरुआत हुई वो भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। हम बातचीत शुरू करते हैं हमारे आज के खास मेहमान कर्नल कमर भारद्वाज से। सर, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से हुई शुरुआत आपका, या परिवार में कोई बैकग्राउंड नहीं था, आर्मी से आप किस तरह से जुड़े, कैसे वो जज्बा आपके दिल में आया।
1: मैं अपने बारे में बताने के साथ ये मैं कहूंगा कि मैं एक बहुत ही जिम्मेदार फैमिली का तीसरे नंबर का बेटा था
0: जी,
1: और मेरे पिताजी जो थे वो एक फार्मर थे, और उसमें जो मैंने मैट्रिकुलेशन किया वो एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ करके और आर्मी ज्वाइन की एज ए जॉन।
0: अच्छा।
1: और टेक्निकल रेजिमेंट सिग्नल्स के अंदर मेरा एंट्री हुआ व्हेन मेरी उम्र केवल 17 साल 216 दिन की थी।
0: अच्छा।
1: और उस समय हम सिग्नल्स के अंदर रिक्रूट भर्ती किए गए थे
0: जी,
1: और वहां भर्ती होने के बाद में ट्रेनिंग वगैरह खत्म किया और उसके बाद में हम जालंधर पोस्टिंग हो गए एज ए जॉन।
0: अच्छा।
1: ये फौज के बारे में मोटिवेशन इतना कुछ नहीं था, एक जमींदार फैमिली से होने के नाते कॉलेज से भागकर,
0: अच्छा,
1: फर्स्ट ईयर कॉलेज से भागकर हम आर्मी के अंदर ज्वाइन किया
0: जी,
1: और अपना मोटिवेशन यही था कि हम आर्मी के अंदर किस प्रकार से नौकरी करें
0: जी। सर, आप एक जमींदार एक किसान परिवार से आते हैं, आपके पिताजी किसान थे, तो आपका किस तरीके से वो परिवेश रहा और अचानक फिर ऐसे आपके दिल में जो जज्बा आया फौज ज्वाइन करने के लिए, फौज में भर्ती होने के लिए, तो ये कहां से मोटिवेशन, जैसे आपने बताया कि हमें
1: ये बहुत ही एक अजीब सी बात है कि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इतनी जल्दी नौकरी करूं।
0: अच्छा।
1: बट जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ी रहा था गवर्नमेंट स्कूल गढ़ी अर्सरू में
0: जी,
1: उस समय मेरा इंगेजमेंट हो गया।
0: अच्छा।
1: और इंगेजमेंट से डर के शादी नहीं करें। अच्छा। अभी कॉलेज से भाग करके और बगैर बताए पेरेंट्स को हमने आर्मी ज्वाइन कर ली।
0: अरे वाह।
1: और आर्मी ज्वाइन करने के बाद जब पता पड़ा हमारे पिताजी को कि हम फौज में जा रहे हैं तो पूरा परिवार बहुत नाराज था, और पिताजी ने आकर के काफी कुछ कोशिश की, क्योंकि जो मेरी वाइफ जो शिक्षा भारद्वाज जो अभी नहीं है वो उनके ताऊ जी वहां पे हेड क्लर्क पोस्टेड थे।
0: अच्छा।
1: सोल्जर बोर्ड में, और गुड़गांव में जब मैं भर्ती हुआ तो मेरे फादर जो है वो उनके ताऊ जी के पास पहुंच गए और मेरी कंप्लेंट की कि भर्ती होके जा रहा है, इसकी शादी वगैरह अरेंज कर रहे थे।

0: तो इसको रोको। तो मैंने बड़े रौब से बगैर ज्यादा कुछ बोलते हुए अपने फादर का बहुत रिस्पेक्ट करता था और गर्दन नीचे करके और अपने जो वुड बी फादर इन लॉ को भी ये बोल दिया कि जी फौज में जाना मेरे को अच्छा लगता है, आई वॉन्ट टू गो एंड ज्वाइन द आर्मी ओनली।
1: जी तो आप डिटरमिन रहे, आप मजबूत रहे कि मुझे तो आर्मी ज्वाइन करनी ही है।
0: एक्चुअली ये था कि टेंथ करके अगर कॉलेज में आगे नहीं पढ़ना है
1: जी,
0: और जोश था कि आर्मी ज्वाइन करें
1: जी,
0: क्योंकि आर्मी उस टाइम पे नंबर वन प्रोफेशन होता था आज के जमाने को ना कहते हुए। एंड आई हैड द इंस्टिंक्ट माई सेल्फ इन दैट फीलिंग इससे बढ़िया नौकरी कुछ नहीं हो सकती।
1: अच्छा सर, वो कौन सा साल था जब आपने ज्वाइन किया?
0: इट वॉज
1: 1961
0: या, एंड आई वॉज पोस्टेड रादर फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर।
1: अच्छा,
0: और वहां पे इतना ज्यादा झगड़ा हुआ।
1: अच्छा,
0: और जो मेरे ओडी फादर इन लॉ थे उसने जाते समय वार्निंग दे दी थी कि अगर जा ही रहे हो बगैर हमारे बताए
1: मर्जी के
0: तो वहां जाकर के फिर ये मत बोलना कि आप हमारा नाम कटवा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे नहीं कि आप पीछे हट जाएं।
0: और जिस काम से मैं भागा था
1: जी,
0: जिससे शादी ना करने के डिले करने की शादी से भागा था, जब मैं रिक्रूट की ट्रेनिंग कर रहा था तो मेरे को 10 दिन की छुट्टी बुला करके और मेरी शादी भी हो गई।
1: अच्छा,
0: व्हेन शी वाज 14 इयर्स एंड आई वाज 18 इयर्स ओनली।
1: ओके,
0: बिकॉज आई ज्वाइंट द आर्मी व्हेन माय एज वाज ओनली 17 इयर्स 216 डेज।
1: अच्छा, आप पूरे 18 की भी तब तक नहीं हुए थे
0: जी,
1: और आपने अपनी सर्विस जो है नेशन के लिए, आर्मी के लिए, फोर्स के लिए देना शुरू कर दिया था।
0: जी
1: जी, तो सर शुरुआत किस तरह से हुई? आप इन्फेंट्री में रहे, राजपूताना राइफल्स में रहे, तो यही शुरुआत थी या इससे पहले भी आपने किसी और जगह भी काम किया आर्मी में?
0: एक्चुअली जब सिग्नल्स के अंदर हम जवान थे
1: जी,
0: तो वहां हमारी पोस्टिंग हो गई ट्रेनिंग वगैरह खत्म करने के बाद में।
1: अच्छा,
0: जालंधर अलेवन कोर सिग्नल रेजिमेंट, उसके अंदर पोस्टिंग हो गई। एंड व्हेन आई वाज देयर 1962 का चाइना के साथ वार।
1: अच्छा,
0: हुआ
1: जी,
0: सो दैट टाइम हम जवान थे।
1: अच्छा,
0: तो पूरी रेजिमेंट के अंदर काफी तहलका मचा हो रहा था और हम एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग जवान बन गए थे वहां पे। और 62 का ऑपरेशन के बाद में
1: जी
0: इमरजेंसी कमीशन स्टार्ट हुआ।
1: अच्छा,
0: तो इमरजेंसी कमीशन के दौरान
1: जी
0: मेरे को स्पेशली एक अच्छा जवान सिलेक्ट करके।
1: अच्छा,
0: और कमांडिंग ऑफिसर के साथ में कुछ एक कैंडिडेट से जिनका इंटरव्यू कैंडिडेट करके, और कर्नल साहब को जो हमारे सीओ थे उस समय
1: जी,
0: उनको स्क्रीन आउट करना था कि इनको हम आगे एसएसबी के लिए रिकमेंड करें।
1: अच्छा,
0: सो वो बड़ा एक अच्छा इंसिडेंट है विच यू वुड लाइक टू नो।
1: जरूर सर, जरूर।
0: मेरे को ये ड्यूटी दी गई कि सबको बारी बारी कमांडिंग ऑफिसर साहब के अंदर ऑफिस में भेजते रहिए और उनके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके एंड डू दैट फॉर
1: जी।
0: सो सीओ साहब 1:30 बजे लंच ब्रेक के लिए घर चले गए और जाते समय बोल गए कि मैं 3 बजे वापस आऊंगा और 3 बजे के बाद में बाकी कैंडिडेट का इंटरव्यू करेंगे।
1: अच्छा,
0: 3 बजे वो सही डॉट 3 वापस आ गए तो फर्स्ट कैंडिडेट को हमने बोला कि आप अंदर जाइए, तो वो अंदर गए तो उन्होंने अंदर जाते ही बोला गुड मॉर्निंग सर।
1: अच्छा,
0: तो सीओ आस्कड हिम कि व्हाट इज द टाइम? 3:05 सर।
1: अच्छा,
0: तो वाई आर यू सी मी गुड मॉर्निंग सर? तो ही सेड के सर वी हैव बीन टोल्ड इन द सिविल इफ यू मीट समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम यू मस्ट विश हिम गुड मॉर्निंग। बोलता इफ देर इज एनी हार्म इफ यू विश मी गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, बट सर वी हैव बीन टोल्ड द सिविल लाइक दैट। ही पुट अप सन अदर क्वेश्चन टू हिम ऑल्सो, सो ही वॉज नॉट एबल टू रिप्लाई इट प्रॉपरली। Then he called for me.
1: जी.
0: I entered, saluted him, and he put up all those questions to me. And straightway, जहाँ ही वो ऐसे सवाल सारे मैं फटाफट जवाब दिया,
1: जी.
0: तो कर्नल साहब ने मेरे को तो चेयर ऑफर कर दिया और उसको बोला थैंक यू।
1: अच्छा,
0: कैरी ऑन।
1: और आपको
0: एंड ही इंसिस्टेड मी और रादर मोटिवेटेड मी, यू ट्राई फॉर कमीशन, वाई डोंट यू ट्राई फॉर कमीशन? आई सेड सर आई एम नॉट ग्रेजुएट, आई मेट्रिकुलेट ओनली, आई एम नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन टू अप्लाई फॉर द इमरजेंसी
1: क्राइटेरिया।
0: एंड ही टोल्ड मी दैट ओके क्राइटेरिया नहीं है अभी, तो आप एसीसी के अप्लाई करिए, यू अप्लाई फॉर आर्मी कैडेट कॉलेज एंड आई सी दैट यू गेट सिलेक्टेड। एंड माइंड यू आफ्टर दैट आई नेवर लुक बैक। देयर वाज 63 कैंडिडेट फ्रॉम माई रेजिमेंट, दोज हु अपियर्ड फॉर इनिशियल आर्मी कैडेट कॉलेज, all the test and all that. I was the first one to get selected out of three candidates out of 63 जो कि SSB तक पहुंचे.

0: तो ये मोटिवेशन सर आपको
1: ये मोटिवेशन मोटिवेशन दैट वे आई गॉट मोटिवेटेड एंड आफ्टर दैट आई नेवर लुक्ड बैक. आई हैड वेरी गुड कैरियर थ्रू आउट माई आर्मी कैडेट कॉलेज देन IMA एंड व्हेन आई पास्ड आउट फ्रॉम देयर यू आस्क्ड मी दैट हाउ यू गॉट इनटू इन्फेंट्री दैट टू राजपूतान राइफल. सो ऑन दैट आई जस्ट टेल यू कि वहां पे जो मेरे कंपनी कमांडर थे IMA के अंदर
0: जी.
1: वो राजपूतान राइफल से मेजर शर्मा साहब थे.
0: अच्छा.
1: जो कि वार वेटरन थे और VRC डेकोरेटेड थे.
0: अच्छा.
1: सो आई वॉज वेरी आउटस्टैंडिंग. माइंड यू आई मस्ट बी प्राउड ऑफ टेलिंग यू ऑल्सो
0: बिल्कुल
1: आई हैव प्लेड वॉलीबॉल नेशनल लेवल
0: एंड
1: बास्केटबॉल स्टेप डाउन एंड आई वॉज गुड बॉक्सर एंड क्रॉस कंट्री रनर ऑफ द टॉप क्लास इन एकेडमी.
0: वॉलीबॉल बॉक्सिंग और रनिंग
1: क्या बात है. एंड वॉलीबॉल नेशनल लेवल इज समथिंग वेरी सो ही वॉज सो इम्प्रेस्ड एंड ही वॉन्टेड मी टू गो टू हिज रेजिमेंट ओनली.
0: अच्छा.
1: एंड दैट्स वाई वेयर इज माई CO that time who got me selected for ACC, he wanted me that I should join signals. But
0: अच्छा.
1: I got into Rajputana Rifles and I was mighty happy to be with the Rajputana Rifles.
0: तो सर आपको ज्यादा मजा किसमें आया, मतलब आपको लगता है कि राजपूताना राइफल्स ही आपके लिए जो है एक ड्रीम था.
1: देखिये ऐसा मैं बताए कि आर्मी ज्वाइन करना एज ए मैटर ऑफ प्राइड एंड टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर एज ए डबल मैटर ऑफ प्राइड. And if you get into infantry, nothing like that.
0: Achha.
1: And among infantry, Rajputana Rifles
0: top.
1: Is at top.
0: Achha.
1: And I was very proud of this, that I got into Rajputana Rifles.
0: Kya baat hai, sir?
1: You know, my elder son is also from Rajputana Rifles.
0: Yes, sir.
1: And
0: that
1: boy also, because Rajputana Rifles is one of the very good regiment, and he is the one.
0: जी क्या बात है सर. हम आगे सर आपसे बात करेंगे और हम 62 जैसे आपने बताया हम 71 की बात करेंगे क्योंकि आप वॉर वेटरन रहे 1971 वॉर के, तो हम उस पर भी बात करेंगे और कुछ आपसे इंटरेस्टिंग कहानियां भी जानना चाहेंगे. तो आगे बढ़ेंगे हम और अपने लिसनर से बताना चाहेंगे. आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप हमारे आज के हमारे खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज जो सेना मेडल सम्मानित हैं और 1971 वॉर वेटरन हैं उनसे आप सवाल कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और हमें आप सुन सकते हैं हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर. आप बने रहे हमारे साथ, यह है देश का नंबर वन रेडियो आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स. आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ.

0: 102.6 यह देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद और आज हमारे हैं खास मेहमान कर्नल कंवर भारद्वाज, सेना मेडल से सम्मानित 1971 वॉर वेटरन। सर, एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के हमारे इस शो में।
1: वेलकम, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया आज हमारे साथ। आप जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हमें बता रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही अनोखी भी हैं और बहुत ही खुशी देने वाली भी हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि आपने बचपन से ही किस तरीके से आपके मन में था कि आपको फौज में भर्ती होना है और आपने किसी की परवाह नहीं की और आपने वो मकाम बनाया जो हर इंसान के लिए, सर मैं समझता हूं कि आसान नहीं होता, जाहिर है बिना मेहनत के फल नहीं मिलता, तो वही आपने अपनी लाइफ में वो किया, अपने करियर में आपने जो अचीवमेंट्स हासिल की, वो जो मकाम आपने बनाया, तो इसके बारे में आपके कुछ सर कुछ शब्द मैं चाहूंगा कि आप कहना चाहेंगे अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं?
1: आई थिंक ऊपर वाले ने जो दिया है
0: जी,
1: जितना हम एक्सपेक्ट करते थे उससे भी बहुत अच्छा मिला है। और जो 71 वॉर के बारे में
0: जी,
1: मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि मैं बड़ा यंग ऑफिसर था एंड आई वॉज मेजर रैंक था मेरे पास में
0: जी,
1: आई वॉज कमांडिंग वन ऑफ द कंपनी ऑफ 9th बटालियन राजपूत राइफल
0: जी
1: इन पुंछ सेक्टर,
0: पुंछ सेक्टर में जी। तो सर 1971 वॉर वेटरन हैं आप, तो उसके सर हम उस वॉर के बारे में जानना चाहेंगे जिसका आप हिस्सा रहे हैं, तो वो किस तरीके का सर दौर था, वो क्या हालात थे और जब वो जंग थी तो उस पर आपका और जो नेशन उस वक्त जो देश पर में चल रहा था उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
1: देखिए उस समय जो हालात थी
0: जी,
1: मुक्ति वाहिनी वगैरह बहुत पहले से मूवमेंट शुरू हो चुके थे
0: जी
1: ईस्टर्न सेक्टर में, बट नॉर्दर्न सेक्टर के अंदर पुंछ एरिया स्पेशली उस साइड के अंदर कोई ज्यादा इतनी चहल पहल नहीं थी, लड़ाई की तैयारियां नहीं थी। लेकिन लकली वी हैड ए जनरल डिव कमांडर मेजर जनरल कुंदन सिंह
0: जी,
1: ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम राजपूत राइफल्स and he happened to be a one of the outstanding general who retired as MS lieutenant general
0: जी.
1: He was the one who pulled up the complete division and we were prepared for any eventuality or any war type thing
0: जी.
1: at that time
0: जी.
1: So he was the one and I was with the Bravo company commander
0: अच्छा.
1: in Punch sector

0: where Punch is other side of the Punch River, and we were the other side of the this side of the Punch River, and other side
1: of the
0: हम इस साइड में थे
1: अच्छा
0: और पुंछ के थोड़ा सा आगे चलने के बाद में पाकिस्तान बॉर्डर स्टार्ट होता है एंड आई वाज फेसिंग द पाकिस्तानीज अपोजिट माय पोस्ट अक्रॉस द रिवर पुंछ रिवर
1: मतलब आमने सामने की
0: आमने सामने थे
1: बिल्कुल
0: और उनके पास में वहां पे आरसीएल गन लगी हुई थी
1: अच्छा,
0: और एमएमजी लगी हुई थी
1: okay.
0: वो डायरेक्टली हमारे अंडर व्यू थी दे कुड फायर एट अस एंड वी कुड फायर एट देम
1: अच्छा बिल्कुल
0: आमने सामने फ्रॉम दैट टॉप एंड आई हैड You know, company was deployed on three posts.
1: अच्छा.
0: And I was on the middle post. My middle post, जो पहाड़ी का था
1: जी
0: उससे हम पूरी कंपनी को अपना कंट्रोल करते थे
1: ठीक है.
0: और सामने से फायर वगैरह आते थे चार तारीख फोर्थ ऑफ दिसंबर
1: जी
0: फायरिंग स्टार्ट हो गया तो फायरिंग स्टार्ट होने के बाद में पूरी रात हम लगभग लड़ाई लड़ते रहे और जो ही फायरिंग स्टार्ट हुआ तो माई एक्शन वॉज कि मैंने पूरे जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाना है एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली व्हेन द फायरिंग वाज गोइंग ऑन आई नेवर बॉदर्ड फर्स्ट आई वेंट टू अदर पहाड़ी अदर जो कि जहां पिकेट थी ऑलमोस्ट अबाउट किलोमीटर अदर साइड ऑन द अपहिल ऑफ द माउंटेन एंड आई मेट ऑल द पर्सन एंड जवानों का हौसला बढ़ाते देन आई वेंट टू द अदर पिकेट And then to my own picket, and complete night I was active with that meeting the people.
1: ये movement आपकी पूरी रात रही.
0: पूरी रात रही.
1: जी.
0: And when I
1: wait करते रहे, when I,
0: you know, we have the command post.
1: अच्छा.
0: And command post is sort of a very very solid bunker.
1: बिल्कुल.
0: From where you could observe and then direct the firing and other thing also and command your company also.
1: बिल्कुल.
0: So from the command post early in the morning, it was going to be daylight. I got out from my command post and was going for a pee place,
1: जी.
0: to a toilet.
1: जी.
0: And the toilet was, you know, all temporary.
1: जी बिल्कुल.
0: टीन टीन के ना टार्मक के टीन होते हैं
1: जी,
0: ड्रम
1: जी.
0: उसको कट करके एक बड़े से पत्थर के साथ में
1: उसको बनाया जाता है
0: बनाया गया
1: ठीक है
0: टेम्परेरी टाइप
1: जी.
0: So I was going to that one. So you know, bunker to bunker, or we have the communication trenches. Communication trenches are the, you know, sort of say about 5.5 to 6 feet deep.
1: अच्छा.
0: Now through which you can walk.
1: अच्छा उसके अच्छा उसके बीच में से आपको गुजर के जाना होता है.
0: So हाँ चल के जाना होता है.
1: जी.
0: So when I was walking to toilet, and then climb up and get out from that one.
1: जी.
0: That time there was a sound of a RCL fire.
1: अच्छा.
0: When the RCL fire came, so my operator was with me.
1: जी.
0: And he was coming out with me कि मेजर साहब कहाँ जा रहे हैं
1: जी.
0: तो वो मेरे साथ जो ही निकला उसने सुना कि अब फायर हो गया आरसीएल
1: जी
0: और इसने मेरा हाथ पकड़ के और पीछे गिरा दिया
1: अच्छा
0: और बोला अरे सब मरोगे एंड इन द मीन टाइम द आरसीएल बम हिट दैट टॉयलेट वॉज इट वॉज थ्रोन अप इन पीसेज एंड द बिग द रॉक ओवर देयर इट वॉज ऑल ब्लोन अप एंड वी वर Really in danger, and it was a good luck of mine.
1: कुछ seconds.
0: Thank.
1: कहीं सिर्फ.
0: Yes.
1: आप मतलब वो जो सामना होने वाला था.
0: It would have been entirely different thing. I would have been pieces.
1: बिल्कुल.
0: Not sitting in front of you today.
1: बिल्कुल.
0: So that was the one. Then what happened next day early afternoon? We got a order that you have to move out to another battalion.
1: Hmm.
0: That is Banwar sector. And defend a company of other Chesik, which was in danger, which was attacked that night.
1: अच्छा तो आपको उनकी मदद की.
0: Next night they were to be attacked.
1: जी.
0: So that one of the FDL behind that is number the FDLs were numbered at 405, 406.
1: अच्छा.
0: So 406 was in danger. It was encircled by the enemy.
1: अच्छा.
0: So I was told that your company will go and reinforce that.
1: Reinforce.
0: 405 picket so जी. That you we could fight back the enemies. So I moved my company before last light
1: जी.
0: To the that side towards Punch. We had to अच्छा. Go across the Punch River
1: जी.
0: Then Punch township is there
1: जी.
0: Pass through that place and they climb up almost about 2000 square feet I say
1: जी.
0: And the brigade headquarters was at the Punch River.
1: अच्छा
0: पुंछ हेडक्वार्टर द ब्रिगेड

0: दुग्जुया नक्सा तो अगर चुटी स्थान का तो अगर कभी दिचिक अचान आजादपुर मंडी सोसे दे नलता स्मिनिया चेज मैं दिचिक अच्छा लुलू इंटरनेशनल ला अचाज दांसमिन जो है चुली दांस छा नाते गाती फटिंग बुजुक शिक शायद अफगान नलेब नंगा जगह चीन नलेब नंगा तो गाती नहीं ऐसा प्रीमियमनेस में दुख में दुख लेकिन एक चीज है कि स्टैंडर्डाइज नहीं है हमारा साइज वगैरह ठीक जग चीन
1: या
0: बाकी चीज मेंटेन खचुल पानी आते कभी तो खुए बाघ अंग तो सोचा कर ना कर दो खुए बाघ होने मना हर चीज खुआ इनपुट दस कि फ्रीक दस ग्रो बेफिया खुआ चाम से चीर घोष पद ना तो डाइज उस पर प्लांट नहीं ना प्लांट ची ग्रो बचू बेफिया खुए फ्रूट को साइज ठीक हो चुके बेफिया खुए बाकी चीज खुँ न्यूट्रन मन मोमर कोशिन जन मोमर कोशिन दे जन उन अगर खुए खार वस खनी चीज मत प्लांट उन तंग ना तो शायद ना फ्रूट उन दुबो से बढ़िया स्टैंडर्ड चुडी का तो पहला दाना का तो चुडी बहुत अच्छा फ्यूचर मार्केट चिल्जा दुख जाए और चुडी खुरा दिख का तो प्रोसेस चौका तो ना दिखे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बढ़िया दंजा दुआ देख रहे कुशी का नक्सा कुशी शायद सीजन टू नोचन कुशी चम चिक नक्सा फार्मर्स शायद खुआ दी चीज रिलेट बाय नॉर्मल सिर्फ बाजार ना कुशी खेल जखन शायद रिलेट बाय गाती कुशी दूस प्रीमियम की अरे अगर ना कुशी ना तो गए एंट्री बने कर किशु कुशी और टी एस एस भी बहुत बढ़िया आता है लेकिन यहाँ प्रॉब्लम अगर दक्षा ग्रोन के सोच रहते फार्मर फीड करते 80% पर वेस्टेज हो और 20% पर सिर्फ इस्तेमाल जो एक कंसर्न चीज है और दक्षा देख देने के इन दक्षा बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे बन सकते जो था ना कुशी वेस्ट छखन पुखरी का ना कुछ प्रोडक्ट हाँ प्रोडक्ट बना था जूस बना सकता है कुशी चीज होना कुशी ड्राई कुशी बना सकते हैं चाहना दस देखे ना सी बक्थोन पे कहते हैं ना तो सी बक्थोन तुझे पोटेंशियल पीछे गाँव सी बक्थोन मंगाती जी ग्रो छा वो सी बक्थोन बाकी एरिया लेवल सी बक्थोन आते नहीं जैसा मिसाल के तौर पर अगर हिमाचल लछात ना लद्दाख इसी वक्त लद्दाख फेस्पा बस है करगिल इसी वक्त खुरा अलग से डेंसिटी हो जो है दी मन खुरा अलग एक लेवल होता रिसर्च लेवल जून प्रोसेस बस बाहर डेंसिटी चेक बचे सबसे ज्यादा डेंसिटी करगिल इसी वक्त पहुंचे डेंस लद्दाख है ना छाना दू एक देना तो गया शायद दोनों का रिसर्च छा बच्चे रिसर्च दाना माबाद हो गया दोनों का रिसर्च छा बच्चे की बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज ना बाकी चीज उन गाचुक्षी दुख देना अच्छी दुख जरखन पो छाना मन प्रीमियम है गाची सिंह पूरा लद्दाख का छखन बोले कारगिल या पूरा हिमालयन रीजन छखन गांव चीज उन प्रीमियम तदू मत मन देना बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लिस्ट है जो मतलब प्रीमियम मी फॉल छ सर
1: हवा साहब गवर्नमेंट सा इनिशिएटिव ले जो मो छना ये इनते संग इनिशिएटिव लेने अति चुलु येरे जदिची लुलु ग्रुप नंबर येरे जने बस ननी अंते कुशु कर किछु कुशु अर फिस्ता का तो जो लरे अंते सिबक थोनी पल्पो डीएनए प्रोसेस बस इन द काल बचुक छना पहला नेरे दे जसर की मतलब मार्केट पो फिस्ते मार्केट पथों से यरा गचुक छ छोर या अंगाती पोटेंशियल पोचान से सोर्स और दूसरा यारे ध्यान एक्सपोर्ट बस रखे अपने अंगाती एंड अंगाती ग्रोअर पोत अंगाती फार्मर पोत खुआ चांस बेनिफिट सोर्स जो
0: ध्यान दो दुख जाए गा चीज सीख दक्षा इवन की चुली खुरा इन्ना चाहे चुली हो कुशु हो या सिबक्थन हो जिस उनके अंगाता फार्मर लो ठीक ठाक बेनिफिट होता गाज गाज ग्रो बाद या दक्षा शायद वन मंथ एक महीने मैंने क्रॉप जिम्मे नहीं आते जैसे किसी बक्थोन इस पर आता होना कहता हूँ सी बक्थोन एक महीने तकरीबन पर फार्मर इज 2 लाख की चौकसी 2-2.5 लाख की चौकसी कमाई बचन ठीक बस इतना लाज बखानी फार्मर उन लाया
1: मेहनत
0: बखाना चुली टाइम है शायद चुली हो बस आधा कनाल बस सुनसे जगह चिका जैसे कि हुंदरमान उन लाचस हार्वेस्ट बजन जो बस जगह खाचिक स्टैंडर्ड तरक्की के तंग दुपह हुई दे जगह ने लाचस कैलकुलेट कर दबा ना आधा कनाल लेकिन फोन तकरीबन 1 लाख की चौकसी हो आधा कनाल बस कम रिकन हो तब मां दो प्रूनिंग उनिंग बस बढ़िया बस साइज वाइज सख्त ठीक होता नहीं कहते बस ज्यादा हो और रही बात कुशु कुशु छा कुशु रह रही कम से कम 35-40 हजार रुपए आराम से खुआ यू चाहिए तू ऑर्चर्ड की तरक्की का तो ना तो शायद कनाल 4-5 लाख चांस हो गया माँ ऑर्चर्ड की तरक्की के मन में बिल्कुल छो छो कुशु है चौथ हो गया हार्वेस्ट बंगता प्रॉब्लम छे दुख हाई डेंसिटी चोल चोना या मतलब मन मीडियम डेंसिटी होना या नॉर्मल सीडलिंग कही होना चाहे तो सुन सकता तो बस यार ना तो मन देख शायद दमो खुर्चिन और दूसरा माता दोनों का स्टीन विन मोच पा मैं नहीं जाऊँ पाई इंचा तो चाहे जो नहीं मन फार्मर इफेयर ठीक ठाक देना तो दूसरा मार्केट है ना एंटरप्रेनर्स के लिए बहुत अच्छा स्कोप है फ्यूचर गाने जुनी के नाता लाज बॉक्स हम ना
1: जाओ दी मार्केट दी प्रोडक्ट उन मार्केटिंग खेल भी पे मतलब मेहनत मांगो बिल्कुल

0: yanu marketing denar gos harvesting tana khoy yanu grading wedding ga mo nazar ja por gos khoy quality nazar ja por gos chana don ga tu ga manage ba ju poor husband loss po ga so in this
1: kam de main chiz ma ta jasin export qualities a chin ju ga chi shi ga ga product chi ek premium quality maintain me fya export quality fya gap jasin gap na ta good agriculture practice re do start chin yara farmer is the plant but chuk tana so yari gap gacho maintain be jarkan po de good agriculture practice we gacho maintain be jarkan po plant put chuk chana khoi starting agent ki here is the product po premium a market angle be product jena men sabse pehla planting material bukhra select bajana planting material po sahi select bawashin jagah o sabse badhiya select bawashin taki khoi nutrient dena bade barabar to tisra khoi lining po sahi akwashin taki khoi ke nima sahi fokto firwati ka der gap na khol dana de ka fruit yong mastab chana de fruit yong chana khwa cham chana da kharji ta de plant pula du zarinja
0: ab do tan ngati market ngati di anti da yandi market bazo ngati agriculture di ngati farmers ne yi ka thon ni
1: tum belka do man me da sa koshish me nod lekin di horticulture ngati ali raza sab is kafi badi initiative di ka lens mein ki usme ye liya ki ngati planting material po premium aur local jagat zare so adu man pehli bar in pura uti lata gan 20000 plant ngati local nursery kan lenin local nursery sa tayar ba jo standard tarike ka tayar ba se aur dichik se etar result tha na shayad farmer mong mosta 100% result hot
0: matlab sam plant ka scam mas kaun se no
1: scam mana mas ka pache jab na already plant pa accumulate so sot matlab di jagan ko adoption so sot der gap na dekhe na phote khir bana de jis po ek do fayda to jo dusra thing ata chi chi chik daksa gap pe good agriculture practice part chi chik daksa ta implement so sen jab nursery mata pura daksa proper nga jindan consultancy pura free ho jo adyan daksa dichik si orchard management den dang jab king department nang daksa khung agar ka da nursery ka
0: farmer chi yadi la
1: पूरा उसको पूरा गाइड बसेगा सो ताचिन जरखने दे सिस्टम पूछो से आप दो चोसन आज के खौफ फ्रूट यो मना फ्रूट ही दाइन के खौफ प्रूनिंग बचा को मतलब काट बसर दमो बसे अच्छा अनवांटेड प्लांट गा देना मिर्गोस खनी दे देना
0: प्रूनिंग बे जना गा मचा देनु पजो
1: गा मचा चा देता प्रूनिंग एक्सपर्ट क्वेश्चन जो प्रूनिंग दो इन की यरा एक्सपर्ट क्वेश्चन गा गा गा गा फ्रूट ओ चिन दो चाते पांच यो चा यो चिन दो मचा अच्छा फ्रूट यो चा मन खन पुचाते और नीमा प्रॉपर पहुंचा बसे दे सिस्टम पूछो चा देर के अपना हार्वेस्ट बचना हार्वेस्ट बे तरक और दमो तरकी का हार्वेस्ट चा ओशन देर के अपना आता देना स्टोरेज पों सही चा ओशन स्टोरेज के अपना पैकेजिंग का तो सही का तो छना का तो ngata due export quality ngati producing already premium yot aur ye export quality ngata daksa agar 20% mein export quality danan med na shayad ngata ada chiz pa ngata kam men khyon se khyon se loss pa kam men khyon se export quality ngata 60-70% sa palen mai engine aur jis mein farmer ko daksa ga to lag yon na ga to 3-4 times ngata zyada benefit yon mi chance chin chuka se
0: zare di ngati program pa yan ga ati soma entrepreneurs ga jo chana government मदद चिका चुक चलुस पर जो अगर कतो चीजी स्टार्टअप ची बॉक्स हम ना जैसे दरे ते सिबक थोन ने तुम चुक चीची जतना पल्प चे मशीन के मत हां चीची यार जैसे की मतलब खुशी खुशी फिया फ्रीजिंग चितों क्यों होते ना या ड्राइव है फिया को चांस हो शा ना मत दो ला गवर्नमेंट ने मदद पका चुक चलुस यार एज एंटरप्रेन्योर यार अच्छा मदद कोई कदर लुस मन
1: सबसे पहला अगर नारी अगर पर्सनल हिसाब से करता ना शायद दना फेस साज 19 ने शुरू बस करें जो पहला गज एनजीओ लास बस देखना गस मार्केट पर सम हागो चुपी दंदा बस जो है दो साल जी मतलब एनजीओ चंग दुख पर पता चंद कि फील एंड प्रॉब्लम पूछी दुख और गा प्रॉब्लम मतलब एड्रेस बा होशा तो जरकन पे दोस्त आसपास एक दो साल जी मतलब दंग हागो इन दुख कि मीन लचिर गोशा तो गया मीन के नगा ताची बिंचा तो जरकन पो तदेर गैप ना मतलब मार्केट पे गति गैप कर लुस दुख मिसाल के तौर पर चीज शियो लेकिन दे चीज पे जगह चाहे माले बहुत न कहते दे चीज पे क्या देगा आर एंड बचा छाना समस्या ले उसके फ्रोन ये सबसे जरूरी याद हो कि खुरा मार्केट हम सबसे पहला यूं चाहे यूं से खुरे खुदती खुरी सुन से सीट मनी निकले ने गा फैमिली के नलेन मन नया जगह चिन्ह या खुरी इन्वेस्टमेंट खुरे सेविंग ची उतना कहते दो यूज बसे पहले सेंसियरली रंग अदलास बचा जो है मेन चीज पर एंटरप्रेनर सोचो सामना देखे ना जब आप कह रहा हूं पता सुन की जी जी खुए आइडियाज लाज बेन दो जरकन पता छाने का तो गैला गा मीज द लाज में न दुने मुखरी ले कुल्या खोज देगा ना सबसे कुल सबसे दो एक चीज पु लॉस सबसे पहला लपशस बजरिन लॉस से कॉन्फिडेंस भी होंग मना देगा ना रंग तैयार बाना डिपार्टमेंट यहाँ आता समझिन यहाँ डिपार्टमेंट आता समझना डिक्चन सां चेस बना यरिया पोटेंशियल पुथों मना दिनिंग यरंग का तो अगर ए कने दस के ले बना दस के ना स्वयं के खेरखन पु खेरबा डिपार्टमेंट दांसा पुदो चेस बना गरी लाइफ एंगा दो थों संजुआ

0: सायद नर्सरी स्टार्टअप बस नंग पहला मारे शुरू बस इन नर्सरी या दक्ष एग्रीकल्चर फार्म मशीनरी जर नंग या कंसल्टेंसी जर नंग पहला रंग स्प्रे कंसल्टेंसी तंग पा आमी ला जरूरत बता छद कि उंगा दिमिर गोशा दुगजर खान पोया या जी आइडिया सही दुगजर खान पोते फिया पहला रंग इन्वेस्टमेंट पो स्थान चाय रंग अस बखान पो रंग कैपेसिटी समय रंग अदन दवा सना देखा ना गवर्नमेंट आसान है चीनी रंग आइडेंटिफाई भाई फिया
1: गवर्नमेंट स्कीम उन
0: गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम है दक्षा प्रोसेसिंग मोहम्मद कारगिल गान इज दक्षा प्रोसेसिंग यूनिट था सोचा प्रोसेसिंग यूनिट दक्षा अच्छा खासा दक्षा बेनोद मोहम्मद प्रोसेसिंग यूनिट या दक्षा खाते कोऑपरेटिव लेवल की होत या एफपीओ लेवल की होत या इंडिविजुअल फार्मर्स होत गाँव दक्षा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट दक्षा प्रोसेसिंग यूनिट ऑप्शन या दक्षा मशरूम ईयरस पर दक्षा मशरूम बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है चीजें बहुत अच्छा कर रहे हैं डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है अच्छा खासा कौन ग्रो रूम में सपोर्ट करता है कौन दक्षा मशरूम सी बक्थोन में भी अभी ऑर्चर्ड डेवलपमेंट के लिए आपको सपोर्ट करता है इवन केयर प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी सपोर्ट करता है ऑर्चर्ड चेफिंग गवर्नमेंट की तरफ ना सपोर्ट खुशी ऑर्चर्ड चौंग जैसे कि गवर्नमेंट का सपोर्ट है सी बक्थोन चुली सब ऑर्चर्ड नर्सरी सख चेफिया गवर्नमेंट लगा सपोर्ट दू जाए सपोर्ट उन यूज बस नाती आम मेंटेलिटी चो नजर बना रक्षा सपोर्ट पूछी नजर बना क्यों से ना फेच यूज बस ना इन्वेस्टमेंट फेच चिक जा या गवर्नमेंट तंखन पचा यूज बस या मैं फिर चिरा मेन चीज बो है ना अगर का तो यहाँ गवर्नमेंट अगर का तो लाख बसता है ना तो लाख एक लाख रुपए रहा खर्चा बचा दो लाख बस लास्ट बना ग्रो निकल लास्ट पे रहा बोलता नहीं दे दो चोक इन में सब स्केल पर रहा का तो शोक होता तो स्केल पर आती तरफ ना ख्याल गवर्नमेंट कम रही होता आती तरफ ना ख्याल रही बस यहाँ अच्छी है जिनसे बना ओवरऑल यहाँ यूंखी हो गया है जिन्हें पाया नर्सरी अगर केस में का तुलता ना तो दक्षा शायद नहीं नर्सरी का यहाँ 30,000 शिक्षक प्लान यो जो है नानी 20,000 प्लान आता डिपार्टमेंट खुराना था सीनिया बाकी यहाँ नर्सरी पर दो निशंग काफी दक्षा दिजिक सी शायद तैयार बस 5,000 10,000 15,000 देसी के लंगाती बाकी नर्सरी पर लाज बने जो है चाहे तुम गाँव में का तो लाज बने का तो शायद आज के नाता नाती प्रोड्यूस बुद्धियां चो से नाता बाहर ला सर्विस हाँ असली के लोकल चाहे लोकल वोकल इधर तो कि मेन चीज पर ग्रो नहीं करना जरूरी करना था स्टार्ट बचा सुमान जरूरी दुख जाए चाहे जब ये जरूरी करना अगर तो प्लांटिंग मटेरियल भी करना स्टार्ट बस पा प्रोसेसिंग देखें एक्सपोर्ट इवन की ऑनलाइन मार्केटिंग दक्षा मन गैप चिंगा चाह सर दुख दक्षा इसी टाइम में और दक्षा सिर्फ सुन शायद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निकलास बेफे शायद सबसे कैपेबल है बहुत अच्छा ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं दक्षा सिंह चाना दून यूं से दून निकल तो लास का तो बना का तो शायद बहुत अच्छा काम कर सकते हैं
1: अहमद साहब बिल्कुल जो दाता मन सर हम उम्मीद सोचो लोकल और वोकल जिस नाते वेलकम चाना येरी चीज रिकमेंडेशन नाती एग्रीकल्चर नाती दी कुशु नाती चुली नाती सी बक्थो ने पल्प येर मशरूम जस दाना दाना सो नाती नु यंग प्रोडक्ट महमूद नाती मुलाका योजु नाती सुंग योजु China agriculture product mangmot gangbu atir gela cha dakchu atir gela chen ju China do expand with ya it expand with ya government is shibar ho shadu young entrepreneur shibar ho shadu chi recommendation da der ko chi yes jalti le chu ju
0: लोकल फॉर वोकल तो अगर गत स्ट्रॉन्ग बुक का तो सामने का तो मेन चीज जा तो कि सबसे पहला ना फार्मर उन लदक्सा एक सेंस ऑफ टीमी सेंस बुक यों चस्पु मन जरूरी दुख जाए चेज बना यहाँ मेन चीज बजाय ग्रोनी का प्रोड्यूस बखान एक टीम चिल दाने प्रोड्यूसर दान मो क्वेश्चन जो है छा ना दें आता प्रोड्यूसर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मन मोहम्मद जो है चेज बना प्रोड्यूस बेफिया मन मी खिमर क्वेश्चन देर गया ना देना प्रोड्यूस बखान गंगमा कंबाइन सो से यहाँ देना मी खाचे अलग से यहाँ ग्रुप चिक दाने दे ग्रुप गंगमा क्यों से दूर प्रोसेस बस है वैल्यू एडिशन जैसे ना बजाय वैल्यू एडिशन बचा सब मन जरूरी चीज है चाहे दे प्रोड्यूस बखन पंगामा मान लो एफपीओ या कोऑपरेटिव या इंडिविजुअल फार्मर गामा जाम सोसे प्रोड्यूस चीज दे प्रोड्यूस पे क्यों से दे कना प्रोसेसर खची लाता से प्रोसेस बचोस प्रोसेस बसर के अपना प्रोडक्ट डेवलप बना मैं यंग महंगा वन चीज से कोई मार्केटिंग बस दो चुकला एक सिस्टम च पूरा एक प्रॉपर सिस्टम चिका दलता नगद चीज चिंता बना दिया लोकल इकोनॉमी बूस्ट बेफिया मा काफी एक रोल चीज चिंता चीज बन दिया एक चेन पूरा चेन चिका हो चिंता बजो यहाँ गाचे चिक अगर कुशी के रंग
1: सापा और
0: कुशी या सी बक्तों ने जूसी रंग सापा का तो स्लेब से नगद उसमें एक पूरा एक लंबा प्रोसेस होता है और प्रोसेस में गाँव में जुक्स पा चिंता छाना दो चीज चिंता बना अति लोकल प्रोडक्ट वो और दूसरा एक चीज में सबसे जरूरी चीज बना लोकल चीज में अतंग सा अति आम तो कंज्यूम बेफिया बहुत प्रमोट बाया जैसे कि गाता करकिछु एप्पल बाहर एप्पल मंगन में सब करकिछु एप्पल दिया कोशिश बाशन दो चीज में मार्केट सेंस बोलता है जिंजुआ और यहाँ दी फायदा नुकसान पो गवर्नमेंट की तरफ से हो या बाकी दो गंग और दूसरा अब लोकली प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को प्रीमियम में इतना का तो लोकल मार्केट में डुलचा मैन चाहे लोकल हो बाहर हो डुलचा मैन देखिए प्रीमियमनेस शेफिया गवर्नमेंट सपोर्ट मना जरूरी दुख जाए जैसे कि पैकेजिंग

0: वो स्टैंड दे आर प्रोसेसिंग यूनिट इन स्टैंडर्ड चो जरूरी दु दुंग गांव का तो ठीक हो चो ना का दे प्रोडक्ट पु जाना खरंग दसंग आते अमूली ओरिजिन थु मदिया जाना अमूली स्टैंडर्ड ओरिजिन पु गाता जा पैक बसे का तो गाती मार्केट का तो लॉन्च बा गेन गाती ओरिजिन पु लॉन्च बा गेन ना का तो शायद 80 रुपए लीटर या 90 रुपए लीटर सब कुछ माता छेन दो छाना दे चीज माता ने आता मैं ना खुशी चुली जरिया जायो पे फटिंग पु गामा शायद ठीक बसे कंज्यूम बना का तो मतलब लादा क्यों नहीं सक कंज्यूम बना डिक्शन लेकिन गाते फटिंग जाओ मैं माना और सबसे प्रीमियम चीज है जना सी वक्तों जरे गाती गा नंग चे सी वक्तों ने यूज होती ना छाना लोकली अवेयरनेस हो चस पहुंच जरूर दुख जाए चस में कंजप्शन पर लोकली का तो छाना कहता हूं दू गाते कंट्री ने बाहर लता मैं नजर हो छाचा में दू जना और प्रीमियम चीज है प्रीमियम चीज बाहर ले जाता प्रीमियम चीज में मदद जाओ अच्छा चीज पूछ जाओ
1: हां अरे इस चौराहे में निकलता ना पूरे सी वक्त होने मैंने
0: हां सी वक्त होने हर जगह सी वक्त सी वक्त होने शायद गतन करके लो पानी बस ज्यादा गतन लदाखी न्यूज़ बस क्या करके लो पहले पानी बस ज्यादा बाहर पानी यूज में सो कोशिश बचा कि दिया यूज
1: बोल गला मत जाओ बा
0: गला मत चाना तो हम आते बाहर चाना गला चीज बगा शायद हेल्थ तंग बढ़िया जिन बाकी चीज गंगमर दमो छन छन पेंगा ता सिस्टम बजा गति फेक होरंग नया दूध फाइबर डाइट्रिक बाकी चीज सब कुछ है और प्रीमियम है ऑर्गेनिक है फिर भी गति दक्सा फे मोतो अच्छा स्कूल जिन से खुलाक चीज खान मन कम थों दो गति मरपु शायद बटर से भी अच्छा है गति दन गिन बस बढ़िया है रंग मरपु जन देनन का तो दे मार्केटिंग से गत पेने का तो जन सर्कुलेट बे कोशिश करता बने का तो यदि एरिया इकोनॉमी खुद ब खुद गेन लॉन्च सो और दूसरा रंग कॉन्फिडेंस हो चुका है रंग आया दक्षिण आती कॉन्फिडेंस पे पंजाब पिक हो जा सो बतो ये रंग योतना एरिंग कॉन्फिडेंस होत पंजाब में इतना करते और ऊपर से पंजाब बे पेस्टिसाइड्स यूज बे सब चीज सांस यूज बे और जी हमने पेस्टिसाइड चंग मावा खाने चीज मत जाओ चाहे जी चीज सुन रंग कंज्यूम बे कोशिश बचा गाता है नगा प्लेटफॉर्म चीन ना रहे प्रोडक्ट पु देन एडवर्टाइज भी कुछ हो जा
1: पता है जो दो जो गाते फुस न्याले मधु पा हां दुल नबी से लाज बा
0: हां दोनों मजा जरूरी चीज है दक्षत मंगो फुदु सो सोंदो कि जैसे कि मास्टर्स बस यों से होंदो या पीएचडी बस यों से होंदो या दो में मैं बाकी अलग अलग कोर्सेज बस यों से होंदो दिया ले मन सिर्फ सुटेबिलिटी खुरी माइंड में तो होंदो कि नौकरी बचिन नौकरी कोई भी मैं क्लास फोर चुना था नौकरी बचिन दे मेंटेलिटी फ्रॉम दक्षा बिंग में जरूरत दुख बेशक यार शायद तैयारी बिजनेस में कमाई दे लेवल लेकिन नहीं हो सकता है लेकिन सेटिस्फेक्शन और बाकी चीज और सस्टेनेबिलिटी सो जना यरी शायद बिजनेस यरी जनरेशन खचे स्टूल भी पावर आउ छन दे चीज पे फोकस बस अगर कत जवान प्रोन इज दक्षा दूसरे टैलेंटेड फ्रू दुख फ्रू गांव महाज मर खाली अच्छा दुख को बस यों से कुछ कंट्रीब्यूशन करो मैं एनजीओ चंगलास बना दी वहां से यरा यरी ग्रोथ पता है जन यरा यरी
1: पोटेंशियलिटी पता
0: है पोटेंशियल पता छन का तो शायद देर हमने को जसिन लिग नि सुन छे अगर एनजीओ चंगलास का तो बना का तो खुद पता है जन की मामा गवर्नमेंट जॉब जॉब वशा में जखन खरा द फीलिंग पे छन खोखरी पोटेंशियल पर बिंग समना चाहना जवान फ्रूने उम्र पोटेंशियल मोमो दुख लेकिन एक चीज है कि डायरेक्शन नहीं है और दूसरा दया सोच दुख मैं आता सिर्फ दफ्सा बुक पूछा छाना बुकिश भी ज्यादा सोच दुख बुक से बाहर होना दफ्सा स्कूल के इन नंग को करिकुलम एक्टिविटीज या बाकी एक्टिविटीज सकता हूँ मैं जरूर दुख ताकि यूं से फ्रून अगर गया फिलोसफी है उस देना सब्जेक्ट में उस फिलोसफी लेवल तक गया है तो वो कुछ क्रिएट भी कर सकते थे लाजबे का कोशिश बचा जी
1: बिल्कुल जो अहमद साहब मैंने जवान हगोतांस यरी सफर बारेंगस यरे स्टाम से दिया ने मेहनत बस और यरा ना बो यरी साथी ने स्टाम से मेहनत बस नति यूले खने किसान पो स्टाम से मेहनत बस यरे यरी ग्रुप चोचिन दे ग्रुप पो स्टाम से मेहनत बस देश को लगाते में मांस सुन लजे और सुबह बस दरे जवान सख सीधे ओंस गया अपना दतो दल मधु पगतो अंगतस नति कमाई नती योंगे नतेस कमाई बा इंजन जरे देश को लेर जस सल्पो बसे वाकन लोकल फॉर वोकल जर भी दी स्लोगन पो नती गवर्नमेंट इस तंग से दरी नती फे इन सुक नतेस दे का अमल का दबा ना रेक नतांग स्वी का डिपेंडेंट छजा मिंदु छाना यरेस नती नची दी प्रोग्राम पे यों समीमांग सुल्ला सल्पो बसे यरी इनिशिएटिव या नती रनु पोटेंशियलिटी चांसियो नती करगिल खुरिया नुकसान से पोटेंशियल दोन स्कोर लायर सल्पो बसे नदी में मुआ सुन जस दे फे उजु सेरे मो इंशाल्लाह ज्ञान खान तखान गति अच्छे नमो का फोन हो छिमि सुन से तं सारा यो में जागो ननु जन सेवा देश सेवा गति प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट ही गचुक स्कीम रिक इनिशिएटिव रिक दोन स्कोर ला यंग प्रोस्पेरा खुरे यंग प्रोग्राम चाहे यूँ चाहे सख पा चाहे ज्यादा शब्द को जैसे खुदा

0: असली हैं या सिर्फ स्क्रीन पे, व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
1: हमेशा पूछो WHY, Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
0: आपका साइबर रक्षक।

0: Durante porque Habrón la en el pin medio muy donde Femi que dio a Kashwani Kerkilin, Waspotus Totogana Mersum Chuson su caseta sponsored program Kisanwani Prochuket y en Mazet.
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो व्हाई। रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक व्हाई आपको फ्रॉड से बचाए।
1: हमेशा पूछो WHY, व्हाई कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।

0: और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
1: हमेशा पूछो WHY, Y कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
0: आपका साइबर रक्षक।
2: स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम किसान वाणी मीडियम FM आकाशवाणी करगिल वास्पत सत्र छिन्नुक आकाशवाणी दिल्ली कना खबर रिले लाडांग

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा की है। नई दिल्ली में आज एशियाई खेल में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुरुष और महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है।
1: इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे। हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद आज ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
2: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि 2047 से पहले विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली के बाहर पहली बार विजयवाड़ा में आयोजित हो रहा सरस मेला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत G7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो ब्रह्मास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अम्बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 की मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए लोगों को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस वर्ष 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया था और अब देश नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमरीका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का

जारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2026 की उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के उत्तर सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधी की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए। अमरीका के लास वेगस में विश्वजीत रामचंद्र मोर ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। चैंपियनशिप में पहली बार किसी भारतीय पहलवान ने पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and dedicated to the nation five major development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh through video conferencing. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the development of Ladakh remains a key priority for the centre.
1: यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े. लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन रहा है. आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं. इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे.
0: प्राइम मिनिस्टर मोदी इंटरैक्टेड इन न्यू दिल्ली टुडे विद मेंबर्स ऑफ द इंडियन कंटिंजेंट दैट पार्टिसिपेटेड इन द 2026 एशियन गेम्स कंक्लूडेड इन जापान अर्लियर दिस मंथ. स्पीकिंग ऑन द ओकेजन, प्राइम मिनिस्टर मोदी डिस्क्राइब द रीसेंट एशियन गेम्स एज मेमोरेबल फॉर इंडिया, हाईलाइटिंग द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज ऑफ इंडियन एथलीट्स अक्रॉस सेवरल स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स.
2: साथियों, इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे. हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है. क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है. कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता. इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल.
0: India finished fourth in the medal tally at the Asian Games held in Aichi, Nagoya, Japan, winning 85 medals. The Ministry of Defence today signed contracts worth over 4,000 crore rupees for the acquisition of the GSAT-7C communication satellite for the Indian Air Force and Varunastra heavyweight torpedoes for the Indian Navy. The Ministry said the two contracts signed in New Delhi mark a significant step towards strengthening domestic defence manufacturing and promoting self-reliance in critical technologies. The government today said that India's merchandise exports to the United States rose to around $51 billion during April to September this year, despite tariff-related disruptions. Commerce Secretary Rajesh Agarwal said that negotiations for the proposed India-US trade agreement are moving in the right direction, with both countries working towards concluding the deal at the earliest. The Supreme Court has issued notice to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and others on a plea challenging their march to the apex court in the national capital over alleged irregularities in the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls. Mr. Gandhi and other opposition leaders held a march to the Supreme Court on 12th of this month to file their petition amid protests demanding the resignation of the chief election commissioner over alleged SIR irregularities. The top court observed that nobody can browbeat the judiciary. It also sought responses from Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and Election Commissioner Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi on a separate petition filed by Mr. Gandhi and other opposition leaders alleging large-scale voter deletions and irregularities in the SIR process. During the hearing of another case, the Apex Court has sought replies from the Centre and the National Medical Commission on a plea seeking greater transparency in the answer key and response disclosure process for NEET PG 2026. The BJP today accused senior Congress leader Rahul Gandhi of allegedly

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट। वाओ,
4: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
5: हमेशा पूछो WHY, Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
4: आपका साइबर रक्षक।

0: Dren test tot khare ga nyan nit pin media mai bito na phami ke diwa kashwani kar kelin waspatu so truk na matsum chu sum su kasa ta de luxi program pro chuget nyan mazat program pro chukan pin tahira bano
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो वाई रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक वाई आपको फ्रॉड से बचाए।
1: हमेशा पूछो WHY वाई कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: तो क्योंकि गतिस्तान दी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक को नेनु गतिस्तान यो दोन सकपा दी डायबिटीज पर इफेक्ट बेत यदि अलावा खाई ले जरूरत किंग अलमा एकदम से शर्मा ने खासकर मिक पो मा एकदम से टूप सुसु तो स्टेन दुपाना पता चत की खुई मा शुगर पर डेथ से हाई सुसु आखला खो एकदम से सडन लॉस ऑफ विजन आ चत तो यह सोलन आता लगा नॉर्मली दिस वाला पता हुआ मगर कोशिश पूरी बार वोशन की दी लेवल को निकल ले पापा से ढूंढ ले नाम इससे दिस ऑफ लक्षण होते जैसे कि माँ हमेशा लच खंची या काम लग पास भी तेंदु खंची या कि पिशाब लेके ज्यादा स्कमशा स्टोक्शा लेके ज्यादा दो या काम लग पा फोक पा नमाद खोई शगुमिया मुच्छा दोन सब ने चौंस है चेक ची बच्चा की खराब वो शुगरी इंसुलिन लेवल पुंची दुख टॉम्स एंड डेफिशिएंसी तो दोन संगतांस दरे पूरा इन्वेस्टिगेशन इत्र पता चल
1: कैसा सर कैसा नहीं दी जर्मो अतांस इसकी लाइफ स्टाइल पर अति लाइफ स्टाइल पर दी जर्मे का दी जर्मो काफी या तंग अति लाइफ स्टाइल का एक होच दे अति लाइफ स्टाइल पर गजुक शिके यंग मरगुशिन दी जर्मो अतां दी जर्मे का न अतां थाकलिन दुश पिला अतांस अति जगजरी अति मिचे गजुक शे बुत मरगुश
0: ता जैसे कि दो बीमारी खुरी बीमारी नहीं खुरी कसम तकसम खुरी हिसाब का अतां ला प्रिवेंशन पर जैसे फॉर एग्जांपल ले रहा सुनसे फील अगर डायबिटीज सुनसे तो खुआ ना क्योंकि इंसुलिन पल दन खो मल दन मना खुआ ना बाहर ना इंसुलिन तो मैं जरूरी सुन फॉर एग्जांपल माथा ला कंडीशन खाई गई कि जैसे इंसुलिन कम सो या डायबिटीज या थायराइड इन हाई कंजेनिटल हाइपोथायरा खास बाहर ना सामान लेन मरोस मगर कंडीशन खाई गई कि गातांस गाती लाइफ स्टाइल की वजह से कदे बीमारी न होत चा नंगोस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर चिमे चा डिस्ट्रक्शन चिमे दो इन नसिंग आता बीमारी जैसे टाइप टू डायबिटीज जो लोग आतांस मेलाइटस जबर डायबिटीज मेलाइटस टाइप टू देन जी छत की गातान ला गाती बॉडी वेट पे वजह से गातान ला मोटापे वजह से क्योंकि गातान ला गाती बॉडी मास इंडेक्स पे लेके गेन लगवाना नॉर्मली खुरी इंडेक्स छत गातान चार बात की गाती हाइट ऐसा भी चाउम से गातान ला वजन पर गाती दो खुरी रेंज छो जैसे कि गातान ला दें बी एम आई जर गाते इंडेक्स का तो फीमत गातेस वेट पो डिवाइड बात के हाइट ना सेंटीमीटर स्क्वायर इन गाता चार बात तो नॉर्मली गाता संगाती दी एरिया ने उम मरोशिन जरूरत की 18.5 से 22.5 के अंदर इन गाता ले तो नॉर्मल रेंज है तो पचना था गेन लेचन 25 सब पचना था ओवर वेट जरूरत देखा ना गेन लेचना था ओबेसिटी इन से कि मोटा पे टाइप ओबेसिटी 1 देन 30 के गेन लेचना 2 या देखा ना मॉर्बिड सपरसेशन या गाता ले मसल मास ऑन सब बढ़ाई पे दैट्स ऑल फैट गाता ज्यादा तो स्टोर लो से क्योंकि को आखिर आखिर ले विशेषन तो गाची इस गाता ले मायूस मगवाने चीज गाता ने कोले कोले का फैट पो जम छिंदु के ओबेसिटी हो सेंटर पेरिफेरल ओबेसिटी हो तो दे ओबेसिटी वजह से चीज छ जमाती इंसुलिन इज द हार्मोन कुन दे रिसेप्टर कुन रेजिस्ट छाना लस पुमाबाना छुता लस्प कम छेद क्योंकि दी लिपिड को वजह से कोई लस्प कम छेद दो कम छाना गाता ला दी इंसुलिन पो मतलब यो तनसी चाह लस मबाना चाह फायदे तो आता कोशिश बुद्धि पर कि बॉडी मंगाती बॉडी वेट पर कम बना बॉडी वेट पर कम हिसाब मंगाती तो इंसुलिन रिसेप्टर पर एक्टिव मतलब ठीक बस लस भाषण दो लस बनाता काफी हद तक मती इंसुलिनी लस्प में इंसुलिन एफिशिएंसी पो खस बढ़ाई बेत जिस गाता ला वेट कम बा लेग जरूरी इन डायबिटिक पेशेंट कुन ला काफी हद तक फॉर एग्जांपल अगर 10 किलो के साप खोला मेहनत खाएगी नो मेहनत चिकनी शिकेन नो कम जाना कोई हद तक काफी हद तक हुई इंसुलिन दी रुके का यानी गाता इंसुलिन रीडिंग पे काफी हद तक असर था कम काफी कम बेत या चोला माती लाइफ स्टाइल इनुक बॉडी वेट अलावा गाता एक्सरसाइज बना दे काफी हद तक रोल होता एक्सरसाइज बना एरिया हर एक मसल हर एक पार्ट पो फंक्शन छाना चीज छत जबन को लेकर देनो उक सुमत सुखला दे हर चीज पो देनो स्लेप छुपाना दे रेजिस्टेंट पो कम छे चांस दे अलावा गाता ला दियोत के जान पहनो कोशिश पो दियोत की ज्यादा दे हाई कैलोरीज डाइट खुरी माता ने जैसे गाती दोखे लोग ICMR जरिए भी इंस्टीट्यूट चल खोस माता ला रिकमेंडेड डेली अलाउंस जरिए माता ला चेहरे तांसुत की गामीज गा चोख लाज बात ना नॉर्मल लाज बात ना दीद से खोस जाकमा चीन जान पुजार वशिन या खोस

0: सुंगा था कम बस या दे अलावा कि आता ला ब्रिस्क वॉक जरूरत की एक्सरसाइज बहुत जरूरत डुल जरूरत आधा आधा घंटा रे डुल जरूरत की ते सामने डुल चो मैं पंग नहीं था छा नॉर्मल डुल चा
1: कैसे?
0: दे अलावा बॉडी के हम वेट पर कम बचे तो ओवरऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये फैक्टर को लेके ज्यादा प्ले इंपॉर्टेंट दो ना स्मोकिंग में बचा हर जगह दी चार
1: कैसे?
0: पांच पो हर जगह यार वाला फायदा था चाहे वो डायबिटीज हो चाहे वो हाइपरटेंशन हो या आपका थायराइड का इशू हो या दे अलावा कोई दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो जो फॉर एग्जांपल कैंसर छो बीमारी से या चोला अगर कंट्रोल बना लाइफस्टाइल मॉडिफाई बना काफी हद तक रोल
1: कैसे सर दरे गा दु सुखी दु पकी दी गा ता जत ब्लड प्रेशर सो खचीज मत पोस दचु अच्छा डॉक्टर रे कमन अच्छा डॉक्टर समान तो समान पोतांग नंग का तुसमान पो नश न्यो छालो पर न्यो छाना रुस पा कमजोर छालो पिलान छालो जिन चीज समान पो मा ना थुम मिन दु या छावा तम बस न दु दु दिस मान थुम जस पोतम छि के इंपोर्टेंट इन या डॉक्टर इज खवा समान तांग जत समान पो थुम मा मा थुम या नु दे रुस पा कमजोर छालो श्न्यो छालो जिन चीज दु तम छि
0: देर जाशे दे गलत सोच पुदी वजह से काफी नुकसान आ चेन क्योंकि गार डॉक्टर पर समान पता में वजह पुदी हो चिंकी खोला पता हो चिंकी अगर पहला लगाता कोशिश पर बाद नाम इसे दिस बीमारी नहीं इतना कि खुरी लेवल चिल्सात पे अगर जैसे फॉर
1: कसम
0: एग्जांपल डायबिटीज डायबिटीज संगाता प्री डायबिटिक जब कंडीशन चोचिन प्री डायबिटिक मतलब यार नॉर्मल हमें डायबिटीज हमें खुश की चाहिए पर आता दिन खो कोशिश बात की लाइफ स्टाइल मॉडिफाई बस से खोया बैक टू द नॉर्मल क्यों में या
1: कसम
0: चलो हाइपर टेंशन लगाता प्री हाइपर टेंसिव स्टेज हो या अर्ली स्टेज अर्ली हाइपर टेंसिव स्टेज हो तो दे कंडीशन को लगाता दी कोशिश पर बात की समान पता वापस से दुन लख लाइफ स्टाइल का अगर ज्ञान नाम है ना तो दो खुरा चोचे अगर वो डॉक्टर बिस की भाई दिस मान पजार को शत फॉर एग्जांपल खवा हाइपरटेंसिव स्टेज यूं से 140 क्रॉस सों से या 130 गेनल सों से दो दो से डॉक्टर को निजदे करना तामत की जैसे फॉर एग्जांपल हफ्ता का चिल्ता है ना कि वाकई में खुली दी बीमार दी हाइपरटेंशन पे हूं सो मैंने एक बार यूं से कंफर्म सों से देखना खास मान पर जब बयान है देन यहां में फॉर्म आ रही चार्ज बना क्योंकि डॉक्टर इस गाता देन लेवल चक्स दिया देन स्टेज होती गाइडलाइंस का तो कि भाई दिस स्टेज पर नहीं डायबिटीज डायबिटीज या हाइपर टेंशन इस मान पर जरूरी क्या जरूरी जब अगर मजा ना फॉर एग्जाम्पल खाई की जरूरत की मजा ना से चाह फर्क छा मैंने नजरे दो कले का यार क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन को लॉन्ग टर्म ही चीज एकदम से ऊंचा हूँ मैं खाचिंग नहीं हूँ मत मगर ज्यादातर पर जरूरत चाह फर्क मिशा जरे क्योंकि दू कले को लेकर प्रेशर पो या चौला लूस ना
1: कैसे
0: अगर खुदा ना खास्ता डेट से प्रेशर ज्यादा लूस की यार मन आधा छत जरमा मजा जख्स या चौला लूस ना कभी कभी नची छत जबना एकदम से हाइपरटेंसिव इमरजेंसी अर्जेंसी नहीं लेवे दे ओखला ची छत जबना दे ओखला यारी किडनी छोते एकदम से एक्यूट फेलियर इन छत या ब्रेन हेमरेज छत स्कीम या छत अलग अलग प्रॉब्लम कुन एकदम से सडन इमरजेंसी इन छत दोन मिलब छुपी दोहे नुक कोशिश पूरी बार विशन की ना हम इसी आसमान चिड़बी से इतना पहला ना ठीक बस कन्फर्म छे कि भाई वाकई में दुगा मिंदु अगर दियो ते कंट्रोल मचा डाइट प्लान कंट्रोल मगवाए इतना तो फिर जहां आसमानी जरूरत है वहां दवाई को आपको कंटिन्यू जगचा दियो में जर चाह कि दियो में समझा कि कोई आदत छिन आदत पिछा छ फॉर एग्जाम्पल काउंटर विद की आदत किस आदत आदत फॉर एग्जाम्पल ये कोई दुखेस मन नहीं मन की को आदत सो जरूरत है हाँ कोई बेंजोडाइजपिन जोक्स मन नहीं मन तो जब इन मन माना ख्वाज यू जरूरत बन उसको कंटिन्यू रखना है हाँ भले उसमें डोज का आगे पीछे हो जाता है तो दे फिलहाल हर जैसे कि डॉक्टर ने बुलाया होगा कि भाई दो हफ्ते बाद तीन हफ्ते बाद चार हफ्ते बाद आ जाओ तो दो छाना आता लग फिर कभी कभी चीज की फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज मान चिता से मच एक मवा जहन से दुख दो से गल अच्छा कभी कभी चीज बना डायबिटीज मान पर जहन दुख एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया सो चाह सो बना खोए देखो कंट्रोल छे उस पर मगर डोज पो गेन ललूस डोज पर हैवी लूस खो अख्तबाब से माना उसका इम्पैक्ट तो होना ही है तो देख हमेशा एटलीस्ट दो से तीन हफ्ते में आपको कंसल्ट करना है तो ये बेहतर रहेगा हमेशा नाम इसी डॉक्टर ने वो कंसल्ट भी नुकचा डॉक्टर जरखन पर बचा और कोशिश पर बचा कि लाइफ स्टाइल इन काफी हद तक इम्प्रूवमेंट बचा
1: कसा सर यार आया कसा तंग आता टाइम पो मन मांग में चिंदु यार आया फिर अच्छी चुकु जूस सरिंग मजरे दियारंग आकाशवाणी करगिल स्टूडियोस के ते तो सोच टॉपिंग निकांग आती गन कौन सक पे खागो तंग मा यों चास पिफिला यार उजू सरिंगो बख्शीस Dari sakpi gan testi se garna binot pin, doctor.

0: Durante su deluxe program ni ani netpin media mai dona pe mica de acasvani cargilen. Waspatu sotor don sonsu caseta program ni masat acinomoni fia program projukan pen Fatima Bano.
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो वाई। रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक वाई आपको फ्रॉड से बचाए।
1: हमेशा पूछो WHY, वाई कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का सबक।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
2: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, इसलिए
3: हमेशा पूछो WHY, कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।

زیالا سونس مشتاق ایس میں عزام پو علی نسون.

ده اسرار شب اسرار.

आकाशवाणी कर्गिल नाबेन्चिगत भारतीय जनता पार्टी बमोनी मेम्बर पार्लियामेंट छपचिगिस दिरिंग लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नथुसे जेएनवी अनु बमोनी रिन नरसिसिका लक्ता मिश्मांग प्यांग कांग्रेस मेम्बर पार्लियामेंट बिमुल एकोजियामी स्कोरला करारदा चिखोंगर तत्पसों नामनिगारु नगरकन बीजेपी मेम्बर पार्लियामेंट डागू बट्टी पुरमंडेश्वरिस जेएनवी नालजोंसी कमेटिस कांग्रेस मेम्बर पार्लियामेंट दी मिंगना

0: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RKLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
6: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
7: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
5: हमेशा पूछो WHY। Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
7: आपका साइबर रक्षक।
8: लास्ट जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इतने भी इतना नजम से स्टेट अवार्ड लोग इस तुम इशू सज जुगी नॉमिनेशन और तक पेल जुगी सेज अक्टूबर ही चौथ सक्टे की हुई तीन देफिया लोकसो लोकसो लस्को सुनानो कर गलबा लस बखन उन्हें मिंग स्पेनर इंडिविजुअल ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन उन स्टेट अवार्ड इफिया नॉमिनेशन फॉर्म स्को जरीन या लोग इस तुम इशू सज जुगी स्टेट अवार्ड उन लोग इस तुम इशू सब जुनी जनवरी इशू सज जुगा एस गोचे जिन जो सल्पो बसेर तस्पे भी मिंग ईमेल एड्रेस हुई तीन gateutladakh@ladakhgov.in या फोन नंबर 9627267।
9: लेमा नदी तो पॉलिसी चीज को नजर आ गानुक प्रीमियम मिनसे बोनस और ग्याला तुक तुक यंग अर्ध्यंगमा चंचो PLI यत खनला सरकारी लस्कुम पन यंबो यंबो प्रोफेशनल सर्विस दोना ग्रेजुएट दोना डिप्लोमा होल्डर उन लालेन मंगेन चाइन PLI पॉलिसी फंड के यंग पोस्टल डिपार्टमेंट नि भरोसा रंगी निमोर ल खन पोस्ट ऑफिस न दिरिंग खोरा थुत पजत यमिन्ना लॉगिन बाजत indiapost.gov.in का
0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RKLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
10: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट। वाओ,
2: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
3: हमेशा पूछो WHY, Why कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
4: میڈیا میں بھی دونوں ایف ایم اے کے جو آکاشوانی کرگل ان وقت اور دونوں میٹنگ شوئن شنو کسط آکاشوانی سری نگر کے نا اردی خبر ان تبصرہ ریلے بیت ریلے لا ڈاؤں بازت

इंडिया की सरपरस्ती में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जेएनके मुनक्किद कर रहा है 70th नेशनल स्कूल गेम्स। 15 से 27 अक्टूबर तक मुनाकिद होने वाले वुशु और टेक्वांडो के खेल मुकाबलों में मुल्क भर से आए हुए हजारों खिलाड़ी शमूलियत कर रहे हैं। आइए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन गांधरबल में इन होनहार खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं और इस जानदार और शानदार इवेंट का हिस्सा बनें। नेशनल स्कूल गेम्स।

0: विजिट कीजिए डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आदाब, आज का तबसरा लेकर हम हाजिर। पाकिस्तान की सियासी सूरतहाल आज की तारीख में एक ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुंची है जहां से इसका नॉर्मल मकाम पर वापस पहुंचना तकरीबन नामुमकिन लगता है, और ऐसी सूरत में ये भी मुमकिन है कि इस मुल्क का वजूद ही सालिम न रह पाए। जो सामीन, अगस्त 1947 को वजूद में आए पाकिस्तान को दिसम्बर 1971 में पेश आए वाकयात और इनके नतीज के बारे में नहीं जानते, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि अपने वजूद के रोज अव्वल से ही पाकिस्तानी फौज ने अपने मुल्क को खारजी और दाखिली सतह पर ऐसे इंतजार में रखा कि न तो मुल्क पुर अमन रहा और न सालिम, और न ही इसमें जमहूरी इदारे पनप सके। पिछली कई दहाइयों से दुनिया भर की जमहूरी सियासत में ये मकोला जवानजद आम है कि दुनिया के हर मुल्क को उसकी हिफाजत के लिए एक फौज मिलती है, मगर पाकिस्तान की फौज को इसकी अपनी हिफाजत के लिए एक मुल्क मिल गया है। वक्त और पाकिस्तान की तारीख ने इस मकोले को बार बार साबित किया है। 1971 में उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान में जिस तरह की सियासी हंगामा आराई हुई थी, कुछ वैसी ही सूरतहाल आजकल पाकिस्तान के दो बड़े सूबों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में वजूद पा चुकी है, और हालात इस डगर पर पहुंच गए हैं जहां लगता है कि ये दो सूबे पाकिस्तान से अलग भी हो सकते हैं। ऐसे में अगर बलूचिस्तान की बात की जाए तो ये हकीकत कहने में कोई दोराया नहीं कि बलूचिस्तान के अवाम ने कभी अपने आप को मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा होना तस्लीम किया ही नहीं है। इसीलिए बलूच लिबरेशन आर्मी नामी अस्करी इत्तेहाद पिछली कई दहाइयों से पाकिस्तान से सियासी अलाहदगी का हदफ लिए हुए हैं, जिसमें आज तक दोनों तरफ से हजारों जाने तलफ और अरबों डॉलर का नुकसान भी हुआ है। काबिले गौर है कि बलूचिस्तान का कुल रकबा पूरे पाकिस्तान के कुल रकबे का 47% है, और इस सूबे की कुदरती मादनियात पाकिस्तान की इक्तिसादियात के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। देखने वाली बात है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने कई माह पहले ही बलूचिस्तान को एक आजाद ममलिकत करार दिया है। बलूचिस्तान की तरह आजकल खैबर पख्तूनख्वा सूबा भी सियासी उबाल पर है। इस मौके पर इस अमर को दोहराना जरूरी बनता है कि पिछले 26 महीनों से कैद में सड़ रहे पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान नियाजी इसी सूबे से मुतअल्लिक हैं, और इस सूबे यानी खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 13 साल से इमरान खान की क्यादत वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की हुकूमत रही है। इमरान खान ने जब क्रिकेट खेल से रिटायरमेंट के बाद अपना सियासी करियर शुरू किया तो उन्होंने अपने ही सूबे से इसकी शुरुआत करके वहां पीटीआई की हुकूमत बनाई। वक्त गुजरने के साथ साथ इमरान मुल्क की मरकजी बागडोर संभाल कर वजीर आजम बना दिए गए। मुल्क सतह पर क्यादत संभालते ही आला तालीम याफ्ता और तरक्की याफ्ता ममालिक की सियासत को बखूबी समझने वाले इमरान खान ने फौज को मुल्क की सियासत से बेदखल करने की काविशें शुरू की। हालांकि इस बात में भी कोई शक नहीं कि फौज ही ने इमरान खान को मुल्क का वजीर आजम बनने के मकाम तक पहुँचाया, मगर फौज ने उसकी नीयत को भांपा तो उसे वजारत उज़्मा से बेदखल करके जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। ये बात बजाय खुद एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि इमरान खान आज तक के तमाम पाकिस्तानी सियासतदानों में से सबसे ज्यादा मकबूल सियासतदान बन चुके हैं, और पाकिस्तानी अवाम बिलउमूम जबकि खैबर पख्तूनख्वा का अवाम बिलखसूस उनके लिए अपनी जानों तक को कुर्बान करने से गुरेज नहीं करते, मगर फौज की आहनी गिरफ्त उन्हें तड़पने का भी मौका नहीं देती है। वहां की मौजूदा हुकूमत ने फौज की मदद से इमरान खान पर 200 के करीब मुकदमात दर्ज करके उनकी अवामी मकबूलियत खत्म करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहे। उन पर दायर किए गए अजीबोगरीब मुकदमात में से एक मुकदमा बुशरा बेगम से उनका इद्दत की मुद्दत के दौरान निकाह का मुकदमा भी है। बहरहाल, बहुत सारे मुकदमात में अदालत से राहत मिलने के बावजूद इमरान खान को जेल से रिहा नहीं किया जा रहा है। इतलात तो ये भी है कि जेल में उन्हें ऐसी अजियतें दी जा रही हैं जिनसे उनकी सेहत खतरनाक हद तक बिगड़ चुकी है। उनकी बिगड़ती सेहत और वफाकी हुकूमत की उन्हें राहत न पहुँचाने की हर दर्मी ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बगावत पर आमादा कर दिया। यूं केपी के अवाम और सूबाई हुकूमत ने इमरान खान की जेल से रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद तक जम्मे गफीर पर मुश्तमिल एक लॉन्ग मार्च शेड्यूल किया। इस तरह के लॉन्ग मार्च के सियासी नतीजे को देखते हुए वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज करके हालात को और भी पीचीदा बना दिया, और हालात वाकयात का इशारा है कि 1971 में बचे पाकिस्तान पर फिर से टुकड़े होने का साया मंडलाने लगा। तबसरा खत्म हुआ। शब खैर।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: अभी आप आकाशवाणी श्रीनगर से उर्दू खबरें और तबसरा समाप्त कर रहे हैं।

थे। मीडियम वेव और एफएम पर ये आकाशवाणी करगिल की आवाज है। सामीन शब के 8 बज चुके हैं, पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर अपने प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

जी भाई जय हिंद। फिल्म नगमों पर मतनी आपका मनपसंद प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए लेकर फिर एक बार आपका दोस्त मोहम्मद हुसैन फयाज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। दोस्तों, अगर सच कहूं तो मोहब्बत का सफर बहुत ही कठिन सफर है। मोहब्बत जिंदगी की सबसे मुश्किल आजमाइश है। मोहब्बत दो दिलों का बंधन है, लेकिन इस सफर में अक्सर लोग नाकाम हो जाते हैं। आशिक हर तमन्ना खो बैठता है, पाने की उम्मीद दिल में रही जाती है।

0: दोस्तों, ये फिल्म नगमे अब ऑल इंडिया रेडियो कारगिल से फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम मेरी पसंद में सुन रहे हैं। कदम रुकते संभलते हैं, बताओ हम कहाँ जाए। दीवाना दिल तड़पते हैं, बताओ हम कहाँ जाए। तमन्ना उड़ती फिरती है फजाओं में धुआं बनकर, मगर अरमां महकते हैं, बताओ हम कहाँ जाए।
1: बहारों का मौसम है, आज खुल के इकरार कर लो, अपनी मोहब्बत का आज इजहार कर लो।

0: दोस्तों दिल तो
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए
4: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरबीआई इससे बेहतर कुछ नहीं
5: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें
6: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट वाओ
7: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है इसलिए
8: हमेशा पूछो WHY कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI
7: आपका साइबर रक्षक

अभी आप फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। मीडियम एफएम पर ही आकाशवाणी करगिल की आवाज से सामीन शब 11:45 होने को है। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से खबरें रिले करेंगे, रिले का इंतजार कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय वायुसेना के लिए संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र खरीदे जाएंगे। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य

0: किया, सेंसेक्स 2% से अधिक बढ़कर 74,316 पर बंद हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की, कहा देश वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसकी विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नई प्रौद्योगिकियों को सीखने के अवसर और दूसरे शहरों में निर्भरता कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
1: यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े। लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन रहा है। आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत G7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक A.Ambarasu की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। G7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित ये उपग्रह भारतीय वायुसेना की सुरक्षित और निर्बाध संचार क्षमता मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वाले के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। दूरसंचार विभाग ने बताया कि सेवा प्रदाता 4G और इससे आगे के वायरलेस नेटवर्क पर इस सेवा का परीक्षण कर चुके हैं। विभाग ने कहा कि 2G और 3G तकनीक वाले वायरलेस नेटवर्क तथा सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पर CNAP सेवा शुरू करने के बारे में अलग से विचार किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय

0: न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों के लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस याचिका को पहले से लंबित मामलों के साथ संलग्न किया जाएगा। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से संबंधित अन्य याचिकाओं पर भी केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। ये सुनवाई SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग के बीच हुई है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सोमवार को अपनी याचिका दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च निकाला था। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से भी SIR से कथित नाम हटाने पर जवाब मांगा है। सरकार ने कहा है कि शुल्क संबंधी बाधाओं के बावजूद इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात बढ़कर करीब $51 अरब हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इसी अवधि में ये निर्यात $45 अरब था। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तावित भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायनों और कृषि उत्पादों के अधिक निर्यात से इस वृद्धि को समर्थन मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है।
1: न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते 20 अक्टूबर को यानी दशहरे के दिन से लागू हो जाएगा। वहीं 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता फरवरी या मार्च 2027 तक लागू होने की उम्मीद है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमान केंद्र का शुभारंभ किया। यह केंद्र भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी, विश्लेषण और प्रबंधन मजबूत करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस केंद्र को वरिष्ठ नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों को भारत के व्यापार प्रदर्शन, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं, नियामक मंजूरियों, आवेदनों के निपटारे और अन्य कामकाज की एकीकृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि गिव इट अप अभियान जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया जा रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में गिव इट अप अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत लोगों से स्वेच्छा से LPG गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई थी। इस अभियान के तहत 1,13,00,000 से अधिक LPG उपभोक्ताओं ने अपनी गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दी। इससे हुई बचत से गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। इस योजना से खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं को लाभ हुआ, जो पहले खाना पकाने के लिए लकड़ी और गोबर के उपलों का इस्तेमाल करती थी। सरकार ने देश भर में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को अब तक 10,56,00,000 से अधिक मुफ्त LPG कनेक्शन दिए हैं। वर्ष 2015 में दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गिव इट अप अभियान ने लोगों को एकजुट होकर गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया।
3: वी इंट्रोड्यूस द गिव इट अप कैंपेन सीकिंग द कोऑपरेशन ऑफ द पब्लिक इन वॉलंटरी गिविंग अप कुकिंग गैस सब्सिडी। We promise that for every connection given up, one poor family currently without gas would be given a connection. This will enable us to liberate many poor women from the health hazard of using firewood. This brings me to an achievement that I think even our worst critics do not dispute. This is the change इन द लेवल्स ऑफ करप्शन।
2: उत्तर प्रदेश की रहने वाली संजू देवी ने बताया कि गैस चूल्हे से खाना बनाना काफी आसान हो गया है और उन्हें अब खाना बनाते समय

0: धुएं का सामना भी नहीं करना पड़ता।
1: पहले जब चूल्हे पे खाना बनाया करती थी मैं तो मेरे धुएं से चेहरे से एलर्जी हो जाती थी। अब मुझे इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि अब आराम से खाना बना लेती। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी।
0: गिव इट अप अभियान ने लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया है, साथ ही हर परिवार तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने के सरकार के प्रयासों को मजबूती दी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। उनकी उपलब्धियां दिखाती हैं कि जुनून, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।
3: हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है और खासकर हमारी महिला हॉकी टीम, आपने तो गोल्ड लाकर 44 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है और जहां पंच वहां परमेश्वर। शूटिंग में शानदार प्रदर्शन 1982 के बाद मैराथन में भारत को मिली सफलता, ये वाकई बहुत सुखद है।
2: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1534 अंक उछलकर 74316 पर पहुंच गया। निफ्टी 375 अंक की तेजी के साथ 22997 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 10 पैसे की मजबूती के साथ 95.05 पर बंद हुआ।
2: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी और निचले तथा मैदानी इलाकों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है।
5: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू के रोहतांग दर्रे सहित ऊंची चोटियों पर आज सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। वहीं कांगड़ा, मंडी, चंबा और शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में वर्षा हुई है। रोहतांग दर्रे से अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल तक अब यातायात सुबह 6 बजे से 5:30 बजे तक ही चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों को रोहतांग दर्रे पर जाने से पहले ताज़ा आधिकारिक निर्देशों की जानकारी लेने को कहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 4 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अंधड़, आसमानी बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
2: मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने SIR के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi unveils development projects worth over 3,300 crore rupees in Ladakh, says Union Territories development remains a key priority for centre. Supreme Court issues notices to Congress leader Rahul Gandhi, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and others on protest march to Apex Court over alleged SIR irregularities. Also seeks poll panel's reply over alleged voter deletions. Defence Ministry signs contracts worth over 4,000 crore rupees for GSAT-7C communication satellite for Indian Air Force and Varunastra heavyweight torpedoes for Indian Navy. Government mandates caller name display for telecom users from 1st of next month. Sensex climbs over 2% to close at 7.

0: पाकिस्तान के शहर पिशावर में आज एक प्राइवेट स्कूल की छत मुनहदिम होने के वाकये में 34 बच्चों और एक टीचर की मौत हो गई। पिशावर कैपिटल सिटी पुलिस के सरबराह मियां सईद ने कहा है कि ये वाकया शहर के अंदरूनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में वाके दीर कॉलोनी में पेश आया। अल खैर स्कूल की छत जिस वक्त मुनहदिम हुई उस वक्त ऊपरी मंजिल पर वाके क्लासरूम्स में 30 तालिबे इल्म मौजूद थे। पुलिस ने कहा कि 3 मंजिला इमारत की छत सही तौर पर तामीर नहीं की गई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत खेलों का एक आलमी पावर हाउस बनने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के साथ बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने एशियन गेम्स के फातिहीन की सताइश की और कहा कि उन्होंने तिरंगे को बुलंद किया। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों की हुसूलियाबियों से जोश, इस्तकलाल और यकीन की अक्कासी होती है।
1: साथियों, इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे। हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता है। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स ये नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल।
0: एशियन गेम्स में तारीखी संग मील को याद करते हुए वजीर आजम ने मर्दों और खवातीन की हॉकी टीमों की जानिब से सोने का तमगा जीतने का जश्न मनाया। खवातीन हॉकी टीम की जीत से 44 साल का इंतजार खत्म हुआ है। नौजवानों की उमूर और खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया, नौजवानों की उमूर और खेलों की वजीर मुमलिकत रक्षा खटसे के अलावा भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की सदर पीटी उषा भी इस मौके पर मौजूद थीं। जापान के आईची नागोया में मुनाकिद होने वाले एशियन गेम्स में भारत सोने के 21, चांदी के 27 और कांसे के 37 तमगों समेत कुल 85 तमगे जीतकर चौथे मकाम पर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हिंदू मजहब से इस्लाम या किसी दूसरे गैर हिंदू मजाहिब में तब्दील होने वाले अफराद खुदकार तौर पर पसमानदा तबकात के जुमरे में रिजर्वेशन के फवायद का दावा नहीं कर सकते। अदालत आलिया ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु हुकूमत की अर्जी खारिज करते हुए जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि किसी शख्स को उसकी साबिका जात की बुनियाद पर हासिल समाजी पसमानदगी का फायदा मजहब तब्दील करने के बाद बरकरार नहीं रह सकता। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्कियाती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके की तरक्की मरकजी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फहरिस्त की खसूसी जामे नजर सानी में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए एहतजाजी मार्च के मामले में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव और दीगर अफराद को नोटिस जारी किया है। अदालत आलिया ने वोटर फहरिस्त से मुबैना तौर पर वोटरों के नाम हज़्फ़ किए जाने के मामले में इंतखाबी कमीशन से भी जवाब तलब किया है। वजारत दिफा ने भारतीय फजाइया के लिए G7-7C मुवासलाती सैटेलाइट और भारतीय बहरिया के लिए वरुणास्त्र नामी भारी टोरपीडोज की फराहमी के लिए 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय दस्ते से मुलाकात की।